गुरमत खोज परे तब पकरे, तन साब तरास उबरिया। पाखंड भरम उपाव कर थाके, हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख

ओडा कूप गोज खिन काढ़ै, ज्यो ओडा कूप गोज खिन काढ़ै त्यो सतगुर वस्त लहाइय। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइय। जन्म पदार्थ पुन

खेल तुझ महे समाहे। ज्यों पावै त्यों राख ले सुख नानक पूरा गुर मिले। बसंत महला पंजवां।

आप संभाले आ सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख तनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला।

कुबजा उधरी अंगुष्ट धार बिदर उधार्यो दास्त पहाए रे मन तू पी हर त्याए।

ठहु उपजै कह रहै कह महिंस मावै जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावै कहन ध्यान सुनन नित से भगत सुहावै अगम

एक नाम कलमल दगद होहे खिन अंतर कोट दान इशनान कलमल दगद होहे खिन अंतर कोट दान इशनान रहाव आन जंजार वृथा श्रम कालत बिन हर भोकट गया।

रहाओ। कित है स्थान तू टिकन ना पावे, ए बिद देखी आखी, ए बिद देखी आखी।

ताज अभिमहान शरण संतन गहो मुक्त हो है शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिना सुख सुपने पी नाही जन नानक।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाहीं चित डोले मन ही ते मन मानिया।

ਲਾਏ ਸੋ ਸੱਚ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਡਾਈ।

तीर्थ अठसठ मज्जन नाई सतसंगत की तूर परी उड नेत्री सतसंगत की तूर परी उड नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जाहर नवी

हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन को मिलिया सुख पाइये सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन एह प्रीत लाई सो जाने कह जाने जिस मन तरै जनना।

अनक बार ब्रह्म है बहुजोनी, एक न काहूं धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंग है कत सागर, कागर नाव लंग है कत सागर, वृथा कथत हम तरते। शिव विरंच असुर सुर जेते, काल

एक पल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवै निद पाई, उदौत भयो पूर्ण भावी को, भेटे संत सहाई, सुख उप

कान हर बरस सगल जग छाया, पै कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहा, मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी।

पतते उधारण कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरनाम दृढ़ायो। कानड़ा महला पंजवां।

ब्यासा ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गो जो जो भगत होए सो पूजहो परमन परम चुकावै गो जात न जात देख मत परम हो सुख जनक।

महंस बला नित उठ उठ जूज मिरकरी जय। काम क्रोध नगर महंस बला नित उठ उठ जूज करी जय। अंगीकार करहो रख ले वहो गुर पूरा काढ़ कढ़ी जय। अंतर अगन सवाल अत बिखे।

हर जत्यो हर प्रभ वडफा सतगुर बचन सुखाने हीयर हर धारी हर प्रभ कृपफा मेरे मन भज राम नाम।

अर्थ कहे साध संग स्नेह सत्यं सुख्यं बसंत नान कहे मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं

ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸੱਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰੇ ਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ।

पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जान श्री पतनाथ।

मुन जन गावे अचल छला गावे गुण तोम अटल मंडल वे भगत पाए रस जाने ओ कब कल सु

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जाने जप।

पुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस तेह नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी।

फेर के अग्गे रखिए जित दिसै दरबार, मोह के बोलन बोलिए जित सुन करे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सच्यार, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन।

गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक देव जाई सबना जिया का इक दाता सो मैं वितर न जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विन पाने के नाय करी जेती सिर्ख उपाई वेखा विन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुनी गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता तो मैं विसर न जाई जे जुगचारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जप कीरत जगले जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुझे।

तार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार पर ये हाथ पैर तन दे पानी तो तै उतरस के मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लई है ओ तोए पर ये मत पापा के संग ओ तो पै नावे के रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर करना लिख ले जाओ आपे बीज

का मान सुनिया मनिया मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मलनाओ सब गुण तेरे मैं ना ही कोए विण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आस बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन छिच कवन वार कवन से रुती महा कवन जित हो आकार वेल न पाया पंडती जे हो वै लेख पुराण वक्त न पायो काजिया जे लिखन लेख पुराण चित वार न जोगी जाने रुत महा ना कोई जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सब

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास ओरक ओरक पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारे कहन कतेबा असलू इक तात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद न जानिए समुंद सह सुल्तान गिरहा से ती मालकान कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिकती कहन न अंत अंत ना करने देन न अंत अंत ना देखन सुन न अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत ना जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दास। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद अपा।

आखें दानव आखें देव आखें सुर नर मुन जन सेव केते आखें आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख ना सके केई के जेवड पावे तेवड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर के हा सो कर के हा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा के तेवा मनहारे केते राग परिस्यों कहियन केते गावन हारे गावे तोनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा तर्म द्वारे गावे चित गुपत लिख जाने लिख लिख तर्म विचारे गावे ईश्वर वर्मा देवी सोन सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देवतिया दरनाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंगत पढ़न रखी सर जुग जुग वेदानाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे अथी रतनाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे धारे से तुदनो गावे जो तुद भावन रस्ते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चित ना आवन।

रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह सा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंडा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करें विपूत खिंसा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कटवा जैनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दो कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान इक संसारी इक पंडारी इक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवे चिलावे जिव होवे फुरमान ओ वेखे ओ ना नदर ना आवे बहुताए हो विडान आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किच पाया सो एकावार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस इक दूजी दो लख होए लख होए लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस हूं गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े थीस आखन जोर च पैने जोर जोर न मंगन देन न जोर जोर न जीवन मरन नह जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जा पै जाए तरम खंड का एहो तरम ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे कार्त करिए रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदा

ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरे ना ठागे जाहे जिनके राम वसे मन माहे सिथे भगत वसे के लो करें आनंद सच्चा मन सोए सत खंड वसे निरंकार कर कर वे कै नजर निहाल तिथे खंड मंडल वर पांड जे को कथे ता

नानक कथना करड़ा सार, जट पहारा तीर सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत चित ताल, करिए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पावन गुरु पानी पिता, माता तरस महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगियाया बुरियाया वाचे तर्म हदूर, करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सोदर राग आसा।

दावन सुदनो पवन पानी बैसंतर दावे राजा तरम द्वारे गावन सुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन सुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सवारे गावन सुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दरनाले गावन सुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन सुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठ की रतनाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे तेई तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आमन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सत साहेब साचा साची नाई है भी होती जाए न जाती रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखे की ता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष भावे सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पासाओ सा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवट वड्डा दिशा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवट चीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कह ना जाई तेरी तिलवड़े आई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुदवे सिद्धि किने न पाया कर्म मिले ना ही ठाक रहाया आखन वाला क्या विचारा सिफती परे तेरे पंडारा जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा मेला पहला आखा जीवा विसरे मर जाऊं आखन औखा साचा नाओ साचे नाम की लागे पूख उत पूख है खाए चलिए दुख तो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए राव साचे नाम की तिलवट आई आख सके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखन पाए वदा न हो वे काट न जाए

गुरुमुख प्रगट हुए आसा महला पहला तित सर्वरण पहले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतक मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हूँ जति पति नहीं पड़िया मूर्ख मुग्धा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी सरणा जिनको ना ही विसरिया आशा महला पंजवा पई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे कित न काम मिल साध संगत पज केवल नाम संग जाम लागे पव जल करन के जन्म बिरथा जात रंग माया के रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हमने।

जय कर कीरत आखिए करते का होए विचारो, तित कर गावो सोहेला सिवरिहो सिरजन हारो। तुम गावो मेरे निरपव का सोहेला, हौ वारी जित सोहेले सदा सुखोए राव। नित नित जियड़े संभालियन।

छह गुर छह उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए हो कर राख वडाई तोए रहाओ रित्वे चस्या घड़िया पहरा सिती वारी माओवा सूरज एको रुत अनेक नानक करते के तेवेश राग तना श्री मैला पहला गगन में फाल रल चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती रूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत बेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोय कहो सहस मूरत नन्ना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंद बिन सहस तव गंद इव चलत मोही सब में ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब में चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए जो तिस पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनों मुहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा रागौड़ी पूर्वी मैला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा है ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे जम काल सह सिल डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम।

सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औद कटे दिन सुरैनारे, मन गुर मिल काज सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जा को आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मने बसेरा, निज कर महल

रह तेरा चितना आवे ना, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखे।

रंग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे नाओ सुल्तान होवा मेल

चंद सूरज दोई गुफे न देखा, सुपने सौन न खाओ, पी तेरी कीमत ना पवे, हौ केवड आखा नाओ। साचा निरंकार निज काए, सुन सुन आखन आखना, जे पावे करे तमाए, रहाओ कुसा कटिया।

पर निंदा परमल मुख सुदी अग्न क्रोध चंडाल रस तत आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की वास रस कोड़े रस से जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कह कट नाम निवास। जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान। जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले जिन हृदय रहा समाए तिन का क्या सालाना अवर स्वाल्यो काए। नानक नदरी बाहरे राचे दान ननाए श्री राग महला पहला। अमल गलोला कूड़ का जित्ता देवन हार मत्ती मरण विसारिया खुशी की ती दिन चार। सच मिलिया तिन सोफिया राखन को दरबार नानक साचे को सच जान। जित सेवे सुख पाईए तेरी दरगह चले मान रहाओ। सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच

रत्ता पहनन मन रत्ता सुपेदी सतदान नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर त्यान कमर बंद संतो

ता अगर वास तन पास अक्षर तीरथ का मुख टिक्का तित कप मत विगास ओत मत्ती सालाहना सच नाम गुणतास।

साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुल्हा हर नाव गुर सर सागर बोहे तो गुर तीरथ दरियाओ जे किस पा

सच मिलै सच उपजै सच में साथ समाए सुरत होवै पत उगवै गुरबचनी पौ खाए नानक सच्चा।

वस्तु विसाही है सच वखर सच रास जिन्नी सच बनंजिया गुरु पूरे साबास नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास श्री राग महला पहला तात मिले पुन तात कहो सुस्ति सुप्त समाए लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोषिया हर जप एक

विचार, गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार, तिद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए, क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए, निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

मिले गुरमत पल्ले पाए सुर नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्जे पैदा जाए। श्री राग महला पहला। तन जल बल माटी भया मन माया मोह मनूर अवगुण फिर लागू भय पूर्व जावे तूर बिन शब्द परमाई है दुबदा डोबे।

मैं अवर ना दूजा कोए रहाओ। आगे देखो डोजल है पाछे हरियो अंगूर, जिससे उपजे तिससे दिलसे काट काट सच भरपूर। आपे मेल मिला वही साचे महल हदूर। साहे साहे तुझ संभला कदे ना विसारे हो, जो जो साहेब मन वसे गुरमुख अमृत पियो। मन तन

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभ सेव।

तीसरे रोग वड्डा मन माहे क्यों दर्गे पत पाई है जहाँ हर नवसे मन माहे गुर मिले सुख पाई है अगन मरे गुण माहे मन रे एनिस हर गुण सार जिन खिन पर

Sou para vocês o patar. चारे अगन निवार मर गुरुमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगाशिया अमृत पड़िया अघाए नानक सतगुर मीत कर सच पावे दरगे जाए श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाइए तुलिए पूरे तोल कीमत किने न पाई है रिद मानक मोल।

दुर्मुख कूड न पावै, सच रत्ते सच भाए, साकत सच न भावै, कूड़े कूड़ी पाए, सच रत्ते गुर मेले, सच्चे सच समाए, मन में मान

नानक गुरुमुख पाईऐ दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला परमे पाए ना विजवै जे पवै दिसंतर देश अंतर मैल ना

मिल सत्संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुरु पुरख न पेट्यो, सो पाउ जल पचे पचाए। ए मानक जियो निर्मूल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु रस मिले, से पूरे पुरख सुजान, गुरु मिल पाउ जल लंगी है, दरगे पत परवान, नानक ते

कैसी वस्त्र विसाहिए, जैसी निभ नाल अग्गे साव सुजान है, लैसी वस्त्र समाल। पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर ले।

पाने मन के सान हर हृदय जमाए ले क्यों पावस पद निर्वाणे काहे गर्भस मूड़े माया पित सुतो सगल कालत्र माता तेरे हो है ना अंत सखाया रहाओ विषय विकार दुष्ट किरखा करे इन तज आत्मे होए।

आए जब तप संयम हो है जब राखे कमल बिकसै मद आश्रमाय बीस सप्ताह रो बांसुरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में अपरम्परो चीने कह नानक इव एक तारे।

जाने नाम खुदाई। जे बहु तेरा पढ़िया होवे को रह ना परिये पाई। सोई काजी जिन आप तजिया

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंझ न्यानो आपे वे खै सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावे नानका हुक्म सोई।

आपे सच पावे तो सच, अंधा कच्चा सच न सच रहाओ, जाके रुख बिरख आराओ, जे ही ताप ते हाथ नाओ, फूल पाओ फल लिखिया पाए,

सतगुर मन कामना तीर्थ है, उसनु दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए, नाउ तिया ये

मान अंतर हर रस लग रहा चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रकाशिया लागा सहज ध्यान मन निर्मल हर रव रहा पाया दरगे मान सतगुरु सेवन अपना ते विरले संसार हौ मैं ममता मार के हर राखिया उधार हौ तिन के बलिहार ने जिना नामे लगा प्यार सोई सुखिए चहु जुगी जिना नाम अखुट अपार गुर मिले नाम पाई है चूके मोह प्यास हर सेती मन रव रहा कर ही मन उदास जिन्ना हर का साध आया हो तिन बलिहारे जास नानक नगरी पाई है सच नाम गुणतास श्री राग महला तीजा बो पेश कर परमाई है मन हृदय कपट कमाए हर का मेल न पावे मर गुस्ता माए समाए मन रे ग्रेही माए उदास सच संजम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास राव गुर के शब्द मन जीतिया गत मुक्त करे में पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां पोग करे नवखंड राज कमाए बिन सतगुर सुख न पावे फिर जोनी पाए हर हार कंठ जिनी तहरिया गुर चरणी चित लाए तिना पिछे रिद सिर फिरे ऊ ना तिल ना तमाए जो प्रभु पावे सोचिए अवर न करना जाए जन नानक जीवे नाम ले हर देवो सहज सुवाए।

आए जिसनो आप दयाल होए सो गुरुमुख नाम समाए। पर पढ़ पंडित जोत की वाद करें विचार मत बुद्ध पवि न बुझई अंतर लोभ विकार लख चौरासी परम दे परम परम होए खुआर पूरब लिखिया कमावना कोई न मेटन हार। सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजे आप गवाए शब्द मिले ताहर मिले सेवा पवे सब थाए पारस परसे पारस होए ज्योति ज्योत समाए जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन पुखा पुखा मत करें

चुप कट है परदास। मन मेरे हर हर निर्मल ध्याए, तुर मस्तक जिनको लिखिया से गुरमुख रहे लिवलाए। राव हर संतो देखो नदर कर,

नाम कितन की बाणी सदा सच है, ये नाम रहे लिवलाए। सुन राग में है लातीजा, जिन्हें एक मन नाम से आया गुरमति विचार, तिनके मुख सद उजले इस सच्चे दरबार। ओ अमृत पीवे सदा सदा सच्चे नाम प्यार, पाई रे गुरमुख सदा पत होए, हर हर सदा त्याई है मलहों में कदे तोय राव। मन मुख नाम न जाननी विन नामे पत जाए, शब्दे साधना आयो लागे दूजे पाए। विस्ता के कीड़े पवे विच विस्ता, से विस्ता माहि समाए। तिनका जन्म सफल है जो चलने सतगुरु भाए, कुल उधारे अपना तन जनेंदी माए। हर हर नाम के आई है जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्हें गुरुमुख नाम से आया विच्चों आप गवाए। ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए, नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याए। श्री राग महला तीजा, हर पगता हर तन रास है गुर पूछ करे व्यापार। हर नाम सलाहन सला सदा वखर हर नाम आधार, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया हर पगता अतुट पंडार। पाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करे गुरमुख नाम ते आए रहाओ। हर पगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार, पाखंड पगत न हो वही दुबदा बोल खुआर। सो जन रलाया न रले जिस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है।

नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदिन नाम त्याई है सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुरु शरणाई सुख लहे। अंदिन नाम त्याए रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हों मैं तृष्णा विकार। बिन शब्दे मैल ना उतरे मर जम्मे हुए खुआर। तातुर बाजी पलच रहे ना उर्वार न पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करता।

बैनस भगत करे दिन राती, होमे मार निचिंद वड्डे भाग सत्संगत पाई, हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई, हिरदय नाम वसाए अंतर लाग ना तामस मूले, विच्चों आप गवाए नाम निधान सतगुरु।

गुर प्रसादी मन वसे हों मैं दूर करे एहो मन ताव तां रहे जा आपे नदर करे पाई रे गुरमुखर नाम ते आए नाम निधान सद मन वसे महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरे ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट चानना।

आए लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जो

अपना धर्म गवावे बूझे नाही अंधन दुख विहानी मन मुख अंध न चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा पजो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई रहाओ इहो शरीर माया का पुतला विच हो मैं दुष्टि पाई आवन जाना जम्मन मरना मन मुख पत गवाई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाए जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुर की शरणागति हौं तिन कै बल जा।

पाई रे गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ। लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद ना आवई दुखी रहन विहाए, बिन शब्द है।

नानक रंग ना उतरे जो हर तुर छोड़िया लाए। श्री राग महला तीजा, गुरुमुख कृपा करे भगत की जय, बिन गुरु भगत ना होई, आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे सोई। हर जियो साचा साची बाणी,

अंत ना पाया जाए, कतनी बदनी ना पाये, हों मैं विच्चों जाए, सतगुर मिले है, सद पैर चे, आप बसे मन आए, पाई रे गुरमुख बूझे कोए, बिन बूझे कर्म कमावणे।

सबद समाए। आपे दे ता पाईए होर करना किछु ना जाए। देवन वाले के हाथ दात है गुरु द्वारे पाए। जेहा की तुन तेहा हुआ जेहे कर्म कमाए। जत सत संजम नाम है।

गुर पाये हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए, मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए, मन रे दूजा पाव चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए, रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार, मन निर्मल नाम से आई है ता पाए मोख द्वार, होमे विच जग बिन सदा।

समाए। शब्द मने गुरु पाईए विच्चों आप गवाए, अम दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए, नाम पदार्थ मन वस्या नानक सह समाए। श्री राग महला तीजा। जिन्नी पुरखी सतगुर ना सेवियो से दुखिए जुग चार, कर होंदा पुरख ना पछाणिया अभिमान मुठे अंकार। सतगुरु क्या फिटकिया मंग थके संसार, सच्चा शब्द ना सेवियो सब काज सवारनहार। मन मेरे सदा हर वेख अधूर।

चार। सतगुर सेव मन निर्मला हौ मैं तज विकार, आप छोड़ जीवत मरे गुर के शब्द विचार। तंदा तावत रह गए लागा साच प्यार, सच रते मुख उजले तित साचे दरबार। सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार, इस्नान दान जेता करें दूजे पाए खुआर। हर जियो अपनी कृपा करें ता लागे नाम प्यार, नानक नाम संभाल तू गुर कहे तेरा पार। श्री राज महला तीजा। किस हो सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाना मन लई विच्चों आप गवाए। एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए, नाम ही ते

माया त्यों जाए। मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मोह देसी जाए। सब किछ आपे आप है हौ मैं विच कहन ना जाए। गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौ मैं विचों गवाए। सतगुर सेवन आपना हौ तिन कै लागू पाए। नानक दर सच्चै सच्यार है हौ तिन बलिहारे जाओ। श्री राग महला तीजा। जे वेला वक्त विचारिए ता कित वेला पगत।

मन तन शीतल सास्यों सास न बिरथा कोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए, साची भगत तासी है जा हर वसे मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है सच नाम बीज पाए, खेती जमी अगली मनुआ रजा सहज सुवाए। गुर का शब्द अमृत है।

विनकर्मा पाया न जाए, पूरे पाग सत्संगत लहे, सतगुर पेटे जिस आए, अंदिन नामे रत्या दुख बिखिया विच्चों जाए, नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए। श्री राग महला तीजा। अपना पाओ तिन पायोन, जिन गुर का शब्द विचार, सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुण सार, दुबदा मैल चुकायन हर राखिया उरदार, सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार, मन मेरे हो मैं मैल पर नाल, हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारन हार, रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया, प्रभ आपे ले मिलाए, अंदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए, ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ न पाए, जिनको पूरब लिखिया सतगुरु पेटिया तिन आए, विण नावे सब डुमणी दूजे पाए खुआए।

सच्ची वाणी हर पाये हर स्यो रह समाए रहाओ। सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सह सुवाए गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु न जाए। जेवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस गुण गाए गुरमुख एहो रंग पाये जिसनो कृपा करे र जाए। संसार एहो संसार है सुतिया रहन विहाए एक अपने पाने कड लयन आपे लेन मिलाए। आपे ही आप मन वस्या माया मोह चुकाए आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाए। सबना का दाता एक है पुलिया ले समझाए एक आपे आप खुआयन दूजे छड़ियन लाए। गुरमती हर पाये।

अवगुणवंती गुण को नहीं, बैन न मिले हदूर, मनमुख शब्द न जाने, अवगुण सो प्रभ दूर, जिन्नी सच पछाणिया, सच रते भरपूर, गुर शब्दी मन वेदिया, प्रभ मिलिया आप हदूर। आपे रंगन रंगियोन शब्दे लयोन मिलाए, सच्चा रंग ना उतरे, जो सच रते लिवलाए, चारे कुंडा पाव थके, मन मुख बूझ न पा।

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना विछड़े नानक गुरमुख होए।

अलख ना लख्या जाए। आपे प्रभु दयाल है आपे दे बुझाए, गुरमति सद मन वस्या सच रहे लिवलाए। मन मेरे गुर की मन लैर जाए, मन तन शीतल सब थी है, नाम वसे मन आए रहाओ। जिन कर कारण तारिया सोई सार करे, गुर के शब्द पछाणिए जा आपे नदर करे। से जन शब्दे सोहने।

तिना सुखे सुख विहाए, ज्ञान विहूनी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

गुरुमति नाम सलाही है, दूजा अवर न कोए रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे, तन सवारण हार। मन के विकार मनह तजे, मन चूके मोह अभिमान। आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाये, मन मुख फिरे दीवान। शब्द नाची ने कथनी बदनी करे, बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर न कोए। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम समाल तू, जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए। मल हो मैं तोती किवे ना उतरे, जेसो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमा

गुर शरण आवे ता निर्मल होए, मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए, मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजा।

पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला, क्यों प्रीतम मिले कर आए, जा देखा प्रभ अपना, प्रभ देखे दुख जाए, जाए पुछा तिन सजना, प्रभ कित बिद मिले मिलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवरना कोए, हम मूरख मुगत शरणागति, कर कृपा मेले हर सोए। रहाओ सतगुर दाता हर नाम का, प्रभ आप मिलावे सोए, सतगुर हर प्रभ बुझिया, गुर जेवड अवरना कोए, हों गुर शरणाई टह पवा, कर दया मेले प्रभ सोए।

कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास प्रभ, तुद्दो खाली को नहीं दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे कड ले जन नानक की अरदास। श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास, हौं तिस विटों चौखनी है मैं नाम करे प्रगास, मेरे प्रीतमा हौं जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थी है, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए रहाओ, नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवे लग्या कड रतन देवे प्रगास, तन वड पागिया जो आए मिले गुरपास, जिना सतगुर पुरख ना पेट्यो से पागहीन वस्ताल, ओए फिर जोन पवाई है विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस ना पिटी है जिन अंसर क्रोध चंडाल, सतगुर पुरख अमृत सर वड पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की लिवलाए। श्री राग महला चौथा। गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाए, हीरे हीर मिल बेदिया रंग चलू लेनाए, मेरे गोविंदा गुण गावा त्रिपत मन होए, अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावे सोए रहाओ, मन रंगो वड पागी हो गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो हौ सतगुर के बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लब्बई लख कोटि कर्म कमाओ, बिन पागा सतगुर नाम मिले कर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है विच पड़दा दूर पयास, बिन सतगुर पेटे कंचन नासी है मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास, सतगुर बोहित हर नाम है कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर के पाने जो चले विच बोहित बैठा आए, तन तन वड पागी नानका जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा। हौं

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन नाथी है पागहीन बैरोए जो हर प्रभ पाना सोचिया तुर लिखिया ना मिटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलें समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए ओए वे परवा ना बोलनी हौ मल मल तो वा तिन पाए पाई रे मिर सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हौ मैं मार रहाओ गुरुमुखिया सुहागणी तिन दया पई मन आए सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड पागी वड जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सबत है पागहीन नहीं खाए बिन सतगुरु पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुरु आगे ना निवे ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आथवे रैन सवाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज चुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचे पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप ले गल लाए गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद तुनी दर वज दे दर सच्चे सोबा पाए जिनी गुरमुख नाम सलाया तिना सब को कहे सवास तिनकी संगत दे प्रभ में।

रस भोगें खुशिया करें माने रंग अपार बोस करें फुरमाइसी वरते हुए अफार करता चितना आवई मन मुख अंध गवार मेरे मन सुखदाता हर सोए गुर प्रसादी पाये कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अथाक किसी चित न पावही बिसरिया।

आ शोषण तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत तिन प्रभु आप पुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राग महला पंजवा मन विलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया छत्र तार बादशाहियां विच सहसे परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थान सनंतरा तेते पव आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर लेन बिन नावे खाक रलिया कोट तेपी सेवका सिद्ध साधक दर खरिया गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिए बिन बुझे मुगद अजान सो प्रभ चित न आयो छुटेगी बेबान सतगुर से ती चित लाए सदा सदा रंगमान प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित कु पकड़े।

होया तीजे चाक्ष खाया चौथे पोर पया तद ही चित ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिसते सोजी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान। श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसरना जाओ तंदा सब जलाए कै

जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एक स्यों चित लाए एक बिन सब तंद है सब मिथ्या मो।

जपना आठ पहर प्रभ त्याए तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड़ अवर न कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पह पंजनो।

मेरे मन हर हर नाम ते आए, नाम सहाय सदा संग आगे ले छड़ाए रहाओ। दुनिया किया वडियाईयां।

उपाव स्यानप सगल छड़े गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो मैं ताप नानक को गुर पेटिया बिन से सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखनहार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनो न विस

जियो पिंड सब तिस्कार, जो तिस पावे सो होए। गुरपूरे पूरा भया, जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा, जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान। जिनको आप दयाल होए, तिन उपजे मन ज्ञान। जिनको मस्तक लिखिया, तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम से आए।

साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल। थान थान अंतर रब

पूरा सतगुरु जे मिले पाए शब्द निधान कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ शरण।

वड पागी मिल संगती सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाओ निमाणया प्रभु मान तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच्यों मरे ना आवे जाए ना वे छोड़िया विछड़े सब में रहा समाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक के सत भाए अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए आई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्री त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार बालक बिरद न जानिए ने चल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाइए निधारा आधार जिस पे खत किल विखिरे मन तन होवे शांत एक मन एक त्याये मन की लाए भरांत गुण निधान नव तन सदा पूरन जा की दात सदा सदा आराधी है दिन विसरो नहीं रात जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिये एह जिंद देखे सुने हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद अकिर्त कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवा मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार सर्व कला कर था पिया अंतर ज्योत अपार सदा सदा प्रभ सिमरी अंतर रख उधार मेरे मन हर बिन अवर न कोय प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना

मनमुख पस न पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भगती नाम विहूणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पाया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुतदारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज कितै न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुरचरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारियां।

अठसठ तीरथ नाओ जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ श्री राग महला पंजवा शरण पे प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सतगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कटन हार बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वड़ पागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूके सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिट

रसना सच्चा सिमरिए मंतन निर्मल होए। मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए। मेर करे जे आपनी चसा न विसरै सोए। मन मेरे साचा सेव जिचर सास, बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश। रहाओ साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए। मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए। तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुर दाता नाम का पूरा जिस भंडार। सदा सदा सालाही है अंत न पारावार, परवदगार सालाही है जिस दे चलत अनेक। सदा सदा आरा

गुरपुरे ते पाईए अपनी नदर निहाल, करम प्राप्त तिस होवे जिसनो होए दयाल। मेरे मन गुर जेवड़ अवर ना कोए, दूजा थाओ ना को सुजै, गुर मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड़ पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब में रहा समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा ले तराए। कित मुख गुर सालाही है करण कारण समरथ, से मथे नहीं चल रहे जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया पै पंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना जमदूत ना लागे डंड। गुर नाल तुल ना लगई खोज डिठा ब्रह्मंड, नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मन में।

प्रभात, क्या तू रत्ता ग्रस्त स्यों सब फुला की बागात, मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभ लोड, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौरासी भरमत्या दुलभ जन्म पाए हुए, नानक नाम संभाल तू।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब कहात जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात। पेई अरणै सौ सेव तू सौ रणै सुख वस गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सोहरे वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहागणी जिन सै नाल प्यार। श्री राग महला पंजवां कर छेवां।

दुख कलेश ना पौ व्यापै, गुरु मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधारण है, पाप सगले जाहे, हौं तिनके बलिहारणे जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसे साच हर का नाओ, सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा, संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारया हर सिमर होए उधार, जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार। जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुर परम काटिया।

रहाओ। सतगुर विटो वारिया जिन दिता सच नाओ, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुर जेवड़ अवर ना दिसई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूरब लिखिया सेई नाम ते आए, नानक गुर शरणागति मरे ना आवे जाए।

अष्टपदियां आख आख मन वावना ज्यों ज्यों जा पैवाए जिसनो वाय सुनाई है सो केवड कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अलहो अगम अपार पाकी नाई पाग थाए सच्चा परवदिगार रहाओ तेरा हुक्म।

करण करे सबना वेखे नजर कर जय पावे तै दे थावा नाम ना जानिए नावा केवड नाव जिथे वसे मेरा पासा हो सो केवड है थाओ अंबर कोई ना सकई हों किसको पुछन जाओ वरना वरन ना पावनी जे किसे वड्डा करे वड्डे हाथ वड्डे आईया जय पावे तै दे हुकम सवारे आपने चसाना तिल करे सबको आखे बहुत बहुत लैने कै विचार केवड़ दाता आखिए।

पाखंड प्रेम ना पाइए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लहै सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया, तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तकै।

त्यों मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड विकार। हौ तिनके बलिहारण दर सच्चे सच्यार, सीचाने ज्यों पंखिया जाली बद्धक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुतिये कोई न संगी साथ।

ज्यों जल सोड़े मछली करण पलाव करे, फिर पावे सुख पाईए जा आपे नदर करे। फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल, तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल। सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल, कामन काम ना आवे खोटी अवगणियार। ना सुख पेई है सौरे झूठ जली बेकार, आवण

अवगण त्याग समाई है, गुरमत पूरा सोए रहाओ। विन राशि वापारिया तके कुंडाचार, मूल न बुझे अपना वस्त्र ही कारबार। विन वखर दुख अगला।

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाई है सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चा डूगर जाओ। बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझ न पा।

राजन जाने अपना दर कर ठाक न होए, नानक एक और अव रहा दूजा अवर न कोए। श्री राग महला पहला, गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर, सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर। पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए। रहाओ हर का मंदर सो

देख निरंजन पाए। गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए। कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए, सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोए। सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए, सुख दुख सम कर जानिए शब्द पेद सुख होए। वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास, चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम ना होए। भगती पाए विहूनिया मुह काला पथ खोए, जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाने कर वसे हो मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हरनाए, श्री राग महला पहला। सुन मन पूले बावरे गुर की चरणी लाग, हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग। दुख कणों दोहागनी क्यों थिर रहे सुहाग।

गुरमत पत सावा तिस तिस के संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवो बिन नावे मर जाओ, मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ, गुरु जिना का अंदुला चेले नाही ठाओ, बिन सतगुरु नाव ना पाये बिन नावे क्या सुआओ, आए गया पछतावना ज्यो सुन्ने करकाओ, बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत, तब लग महल न पाईए जब लग साच न चीत, शब्द रपे कर पाईए निर्बाणी पदनीत, हौ गुर पूछो आपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हौ मैं दुख जल जाओ, सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ, शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा हर राखें उर्धार, सो क्यों मनो विसारिये सब जिया का आधार, शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार, बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार, सब साला है आपको वढो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनिए कहे सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोए, श्री राग महला पहला, बिन फिर तन सिगारिए जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार, दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार, मन रे राम जपो सुख होए, बिन गुर प्रेम ना पाईए शब्द मिले रंग होए, रहाओ गुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सिंगार, सच माने फिर सेजड़ी गूड़ा हे प्यार, गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुणचार, सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साच विकसिया कीमत कह न जाए, हर वर कर सुहागणी निर्मल साचे नाए, मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार, इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार, संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार, खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाने रव रहे ना तिस काल संताए, साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, व्यापारी बन जा रहा।

तिस्तिलना तमाय गुरमुख तोल तोलाय सी सच तराजी तोल आसा मनसा मोहनी गुरठा की सच बोल आप तुलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथने कह न छुटिए ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच न पाइए बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले।

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरियावला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार पवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नावे तन बाद है पूलो मार गयाथ साचो साहिब सेविए गुरमुख अकथो काथ आवे जाए पवाईए पये किरत कमाए पूरब लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए बिन हर नाम न छुटिए गुरमुत मिले मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हों मैं ममता जल बलो।

बिन जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरुमुख अंतर रल रहा, बसे भगत पनार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत करे, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों

साथ सहज शोभा कनी हर गुण नाम आधार ज्यो पावे त्यो रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार। अखर पढ़ पढ़ पुलिये पेखी बहुत अभिमान तीरथ नाता क्या करे मन में मैल गुमान गुरबिन किन समझाइए।

जग सद्या लब लोभ अहंकार मोह ठगौली हों मुई सावरते संसार मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोए मैं तुझ बिन अवर न पावई तू पावे सुख होए रहाओ नाम सलाही रंग स्यों।

आशा अंदर जमिया आशा रस खाए आशा बंद चलाइए मोहे मोहे चोटा खाए अवगुण बद्दा मारिए छूटे गुरमत नाए सर्गे खाई एक तू ज्यो पावे त्यो राख गुरमत साचा मन वसे नाम पलो पत साख हो मैं रोग दवाई है।

जिन तन मन साज सुधारिया तिस सेती निवलाए रहाओ। तन दै संतर होमी है इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए। हर नाम में तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए। अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए, तन है मंचल गालिए ती मन के रोग न जाए। हर नाम में तुल न पुजई सब जिठी ठोक बजाए, कंचन के कोट बत करी।

अब को ऊंचा आखिए नीच ना दूसे कोई, इतने पांडे साजे है इक चानन के होलोए, कर्म मिले सच पाइए थोर बख्त ना मिटे कोई, साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए, अकथ कथा विचारी है जो सतगुर माहि समाए, ई अमृत संतोखिया दर्गे पैदा जाए, कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए, विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए, नानक

नारी सेज पतार, चोआ चंदन लाइए, कापड़ रूप सिगार, केहू फेर लाइए, छोड़ चले कर बार, महर मलूक कहाइए, राजा राव के खान, चौधरी राव सदाइए, जल

निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक करिए सतनाम सिर सारा पाप चाहो मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वेसाहो मन मुख पौ जल पच मोए गुरमुख करे अथाहो श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर कर।

गुरुमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुरु भगत न होए। आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे कोई हर जियो सच्चा।

आ रहा आपे हर जग जीवन दाता आपे बख्श मिलाए जी जंत एक क्या बेचारे क्या को आप सुनाए गुरमुख आपे देवड़ियाए आपे सेव कराए देख पुटंब मोह लुभाना चल दिया नाल न जाए सतगुरु सेव गुण निधान पाया।

जग जीवन दाता मन मुखपत गवाई, बिन सतगुरु को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करें दिन राती हों मैं मोह चुकाया, जिस्यों राता तैसो हो गए सच्चे सच समाया, आपे नदर

नाम निधान हर मन वसे, हो मैं दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया, हो सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कहे कहाए, दिन गुर आप ना जाए, हर जियो भगत वचन सुखदाता, कर कृपा मन वसाई, नानक सो बासुरत दे, प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाव दे, जमदंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे, हर सेती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए, गुर पूरब करते लिखिया, किना गुरमत नाम समाए, रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागो पाओ, सुपने सुख ना पावई, दुख में सवे समाए, जे हर हर की चै बहुत लोची है, किर्त नामे ते आ जाए, हर का पाना पगती मन्या, से पगत पै दर खाए, गुर शब्द दिलावे, रंग स्यों बिन कृपा ले आना जाए, जे सो अमृत नीरी है, पी दिख फल लागे ताए, से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार, सतगुर का पाना

आए। हर का नाम निधान है जिस अंत ना पारावार, गुरुमुख से ही सो दे जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है दूजा और न कोए, गुरु प्रसादी पाए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी दीर्घ सुहावड़ा, सच चुग गए गुरु पा।

आए अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास न बहती है ओना कर ना गिराओ। कटिया तै नित जालिए ओना शब्द ना।

हुकम ना जाने बपुड़े पूले सिरे गवार मन हज कर्म कमाउंदे नित नित होए कुआर अंतर सांत ना आवई ना सच लगे प्यार गुरमुखिया मोह सोने गुर के हेत प्यार सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार आए

आए बिन शब्द परम न चूके न विचों में जाए बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द छाए न पाए शब्द हो में मारिए माया का परम जाए नाम पदार्थ पाए गुरुमुख सह सुभाए बिन गुरु गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए भगत वसल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए नानक शब्द हर्षा लाही है कर्म प्राप्त होए श्री राग महला की जा माया मोह मेरे प्रभ कीना आके परम पुलाए।

रोए। सतगुरु जिनी ना सेवेओ सेवित आए संसार, जम दर्ब दे मारिए फूक न सुने पुकार। बिरखा जन्म गवाया मर जमे वारो वार। एहो जग जलता देख के पज पे सतगुर शरणा, सतगुर सत दिला।

रोग ग्रस्त पुतंग पलेतिया कद हरख कदे सोग गौण करे चौकुंट का करी न बैसन सोए चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए काम क्रोध मोह वस्तिया किरपन लोभ प्या

जोगिया तीर्थ गमन करे खट कर्मा ते दुगने पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलक सिकदारिया रस पोगन विस्तार बाग सुहावे सोने चले हुक्म अपार रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहा चितना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाद अचार वंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाया साधन संग परीत लश्कर तर्क

जम कंकर वस्तरिया। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, जो जो ओ वधाये त्यों त्यों हर्षों रंग। दोहा श्रेया का खत्म आप।

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही जाता काटना सिन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता, सगल उकत उपा।

नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। एहो जगत परम पुलाया, आपो तुद खुआया, पर पाप लगा दोहाजनी, पाग बिना के नाह जियो। दोहाजनी क्या निशानिया, खसमो कुतिया फिर निमानिया, मैले वेस्तिना कामनी, दुखी रहन विहाए जियो। सोहागनी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कै अपनी, आपे ले मिलाए जियो। हुकम जिनानो मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया, सैया से सोहागनी जिनसे नाल प्यार जियो। जिना पाने का रस आया, तिन विच्चों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐ

का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नगर करे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम वखाणिए सतगुर बाज न पायो सब थकी कर्म कमाए जियो औ सतगुर विटो कुमाया जिन परम पुला मार्ग पाया नदर करे जे आपनी आपे लहर लाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जाको जोत करी सरकार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की तैग रखिया दोए कर मस्तक तार जियो सब संजम रहे स्यान पा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोक करे जयकार जियो मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरज समारिया कंठ लाए कह रखियो ने लगे न तकी वाओ जियो मैं मन तन प्रभु ते आया जिए इच्छेड़ा फल पाया सा पाप सा सिर खसम तू जप नानक जी वै नाओ जियो तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वर्तदा जिस पावे तिसे बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे ने समा

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खत्म सेती अरदास खत्म सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आया।

पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा। तीजे पैरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जो बन कटे जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटे दिन जाए। अंत काल पछतासी अंगले जा जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया कराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीन अखी अंध न दिसई बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने न वैन। अखी अंध जीव रस नाही रहे परातो ताना गुण अंतर नाही।

चोट ना खावे ना किस जमन मरना काल जाल जम जोहे ना साके पाए भगत पै तरना पप छेती जावे सहल समावे सगले दुख मिटावे कहो नानक प्राणी।

मेरा मेरा कर पालिए वन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन

तन चित वै तन संच वै वन जा रहा मित्रा हर नामा हर ना समाल हर नामा हर हर कदे ना समाल है जे होवे अंत सखाई त्यो तन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुर मेले सो हर हर नाम समाल।

पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा सब चली रहन विहांदी हर सेवो खिन खिन टिल मूल न करहो जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सेती सद मानो रलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुर स्वामी भेद न जानो जित मिल हर

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुख बनता तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सो कर्म कराए आपे इस जन्म।

जिन पेवकड़े नाम संभालिया सब सफलो जन्म तिना दा गुरमुख जिना मन जिन पासा टालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी हर सत सत मेरे बाबुला हर जन मिल जंज सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबुला हर देवो दान में दाजो हर कपड़ो हर शोभा देवो जित सवरे मेरा काजो हर हर भक्ति काज सुहेला गुर सतगुर दान दिवाया खंडवर पंड हर शोभा होई इहो दान ना रलै रलाया और मनमुख दाज जे रख दिखा।

मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम समाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निभे तेरे नाले। संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए। मन सिंदे से ही फल पावे चरण कमल चितलाए। जल थल पूर रहा बनवारी कट कट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे। मन प्यारिया जी

सहर प्रभ जापे। आप जुगादि सेवक स्वामी पगता नाम आधारे, नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर चूठ पसारे। मन प्यारिया जियो मित्रा हर लगदे खेप सवली, मन प्यारिया

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोई जियो। हर जी सबे प्रतपाल दा कट कट रमैया सोए। सो हर सदा ते आई है तिस बिन अवर न कोए। जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए। मैं हर दिन अवर न कोए। हर गुरसरण आई पाई है मन जारिया मित्रा। वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ। विच हो मैं कर्म कमाव दे ज्यों वे सुआ पुत ने नाओ। पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ। वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ गुरपुरे नाम दृढ़ाया। हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ। जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए। चल दिया नाल हर चलसी हर अंते ले छड़ाए। हौ बलिहारी तिन तो जिन हर मन उठा आए। जिनी हर हर नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए। मन हर हर प्रीत लगाए वड पागी गुर पाया। गुर सबदी पार लगाए रहाओ। हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले। हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के। हौ बलिहारी तिन कौ जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है। मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई पज पो। जिंदु सब किलिख दुख पर हरे रहाओ। कट कट रमैया मन वसे क्यों पाये कित पत। गुर पूरा सतगुर पेटिए हर आए वसे मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नाम में ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम से आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरु बचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूरब लिखिया से आए मिले गुर पास। सेवक पाए बन जारिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वणज वपारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया जिना आप तुथा गुणतास। हर त्यावो सांस गिरास मन प्रीत लगी।

सतगुरु सत दृढ़ाया सत रहो लिवलाए, नानक सब दी सच है करमी पल्ले पाए पौड़ी। हर अंदर बाहर इक तू तू जाने पेत, जो की कह सो हर जानदा मेरे मन हर चेत। सो डरे जे पाप कमावदा तरमी विगसेत, तू सच्चा आप न्याओ सच ता दरिया केत, जिना नानक सच पछाणे।

लिखण वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूरब लिखिया कमावना अवरना करना जाए महला तीजा होर कूड़ पढ़ना पूर बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नावे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनई कहा चुगल का हर की वड्याई।

दूजे पाए दुख पाया सब जोही जमकार। नानक गुरमुख उबरे साचा नाम समाल। महला पहला गली असी चंगिया आचारी बुरिया मनो कुसुद्दा कालिया बार चिटविया रीसा करें तिनाड़िया जो सेवे दर खड़िया नाल खसमें रतिया माने सुख रलिया होंदे तान नितानिया रह निमानिया। नानक जन्म सकार था जे तिनके संग मिला। पौड़ी तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल। तू आपे जाल बताएदा आपे विच सेवाल। तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल। तू आपे मुक्त कराएदा एक निमक कड़ी कर ख्याल। हर तुदो बार किच नहीं गुर सबदी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जाने बहुता रोवे अंदर तोखा नींद ना सोवे। जे तन खसमे चले रजाई दर कर शोभा महल बुलाई। नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा मन मुख नाम विहूनिया रंग कुसुम्बा देख ना पुल। इक्का रंग दिन खोड़िया सोचा इसदा मुल। दूजे लगे पत मोए मूरख अंध गवार बिस्ता।

पौड़ी। शिष्ट उपाय सब तुद आपे रिजक संभाया, एक वल छल करके खाम दे मुंह कूड़ कुसत तिन्नी ताया। तुद आपे पावे सो करें, तुद ओते कम कोई लाया, इकना सच बुझायन तिना अतुट पंडार देवाया। हर चेत खाहे तिना सफल है, अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित बेद बखाने, माया मोह सुआए, दूजे पाए हर नाम विसारिया, मन मूरख मिले सजाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते, जो देंदा रिजक समाहे। जम का पाथा गलो न कटिए, फिर आवे जाए। मन मुख किछु न सूजे, अंगले पूरब लिखिया कमाए। पूरे पाग सतगुर मिले, सुखदाता नाम वसे मन आए। सुख माने सुख पहनना, सुखे सुख विहाए। नान सो ना मनो ना विसारिए, जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा। सतगुर सेव सुख पाया, सत नाम गुण तास, गुरमती आप पछाणिया, राम नाम प्रगास। सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास, जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास। सच्चे सबद सलाना, सुखे सुख निवास। जप तप संजम मने माहे, बिन नावे त्रिग जीवास। गुरमति नाउ पाई है, मन मुख मोह विनाश। ज्यो पावे त्यो रास तू, नानक तेरा दास। पौड़ी। सब को तेरा तू सब सदा, तू सबना रास। सब तू दे पासो मंग दे, नित कर अरदास। जिस तू दे तिस सब किछ, मिले इकना दूर है पास। तुद बाजो थाओ को नाही, जिस पासो मंगी।

सो ऐसा हर नाम से आये मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक।

सतगुर कै पाए प्यार, सदा रावे फिर आपना सच्चे प्रेम प्यार, अस सुवाल्यो सुंदरी शोभावंती नार, नानक नाम सुहागनी मेली मेलनहार। पौड़ी हर तेरी सब करें उस्तत जिन फाफे काढ़िया, हर तुदनो करें सब नमस्कार जिन पापे ते राखिया, हर निमाणिया तू मान हर डाडी हूं तू डाडिया, हर अंकारिया मार निवाए मनमुख मूड साध्या, हर पगता दे वड्याई गरीब अनाथिया। श्लोक महला तीजा, सतगुर कै पाणे जो चले तिस वड्याई वड्डी होए, हर का नाम उत्तम मन वसै मेट न सके कोए, कृपा करे जिस आपनी तिस कर्म प्राप्त होए, नानक कारण करते वस है गुरमुख बूजै कोए। महला तीजा, नानक हर नाम जिनी आराध्या अंदिन हर लिवतार, माया बंदी खत्म की तिन अगे कमावे कार, पूरे पूरा कर छोड़िया हुक्म सवारन हार, गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मोख द्वार, मनमुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार, गुरमुख जिन्नी आराध्या तिन्नी तरिया पौजल संसार, सब अवगण गुणी मिटाया गुर आपे बख्शनहार। पौड़ी हर की पगता प्रतीत हर सब किस जानदा, हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म विचारदा, कारा अंदेसा क्यों कीजे जा नाही अतर्म मारदा, सच्चा साहिब सच न्याओ पापी नर हारदा, साला यो पगतो कर जोड़।

इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर, देखत ही जमराव हसे, ऐसा तैं जग परम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना, जा तिस पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विचों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिवलागे, इत संगत नाही मरना, हुकम पछाण ता कसमे मिलना, रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी, जरा मरण पौ विसर गया, कुटुंब देख बिगसे कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जमे तना, तिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीसला ले बाहरी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे, प्राणी संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, बिखम कोर पंख चालना प्राणी, रव सत तहना परवेसं, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ, तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण, ए जी तू आपे सब किस जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किस कह न जाए, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाए, राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया, तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया, एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कौन है राजा, ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता, और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राजबाणी भगत बेणी जियो की, पहरियां कह कर

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा निर्तक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मिस मेद अमृत दिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अफसर ना पछाणया उनमत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणया सुत संपत देख एओ मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे थाका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना सुखाई बेनी कह सुनो रे भक्तो मरण मुकत किन पाई श्री राग तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटिक जल तरंग जैसा जो पे हम ना पाप करंता अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे हुंता रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर

हर हर नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम ते आया। गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले। गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया। हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई।

मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मिल कमल विकसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावे हर हर।

चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत्संगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर तरिए जियो आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर नर हरिए जियो मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने हाँ रह ना सका बिन नाम वखाने मैं औखद मंत्र दी जय गुरु पूरे मैं हर हर नाम उधरिए जियो हम चात्रिक दीन सतगुरु शरणाई हर हर नाम बूंद मुख पाई हर जल निद हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरिए जियो माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते मिल हर दर्शन मन पी जय जियो मिल सत्संग बोली हर बाणी हर हर कथा मेरे मन भाणी हर हर अमृत हर मन पावे मिल सतगुर अमृत पी जय जियो वड पागी हर संगत पावे पागहीन प्रम चोटा खावे बिन पागा सत्संग न लब्बे बिन संगत मैल परी जय जियो मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन तारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक नाम मन पी जय जियो माज महला चौथा हर गुरु ज्ञान हर रस हर पाया मन हर रंग राता हर रस पी आया हर हर नाम मुख हर हर बोली मन हर रस टुल टुल पौदा जियो आवो संत मैं गल में लाइए मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए हर के संत मिलो मन देवा जो गुरबाणी मुख चौदा जियो वड पागी हर संत मिलाया गुरपूरे हर रस मुख पाया पागहीन सतगुरु नहीं पाया मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो आप दयाल दया प्रवतारी मल हो मैं बिख्या सब निवारी नानक हट पट्टन विच काया हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो माज महला चौथा हाँ गुण गोविंद हर नाम ते आई मिल संगत मन नाम वसाई हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी मिल सतगुर हर रस की चै जियो तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता जाए पुछा जन हर की बाता पाप मलोवा मल मल तोवा मिल हर जन हर रस पी चै जियो सतगुर दाते नाम दृढ़ाया वड पागी गुर दर्शन पाया अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरे अमृत ली चै जियो हर सत्संगत सतपुरख मिलाइए मिल सत्संगत हर नाम ते आइए नानक हर कथा सुनी।

तिसके हौवारियां मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हों सतगुरु विट्टों कुमाइया जीओ जै जै देखा तै तै स्वामी तू कट कट रविया अंतर जामी गुरपूरे हर नाल दिखा लिया हों सतगुरु विट्टों सदवारिया जीओ एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरते पिन पिन ना रलई किसे दीर लाइया गुर प्रसादी इक नदरी आया हो सतगुरु विट्टों बताया जियो जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा।

पाणे हर गुण गुरमुख गावा, पाणे परम पवे बहु जूनी, सब किछ तिसे रजाई जियो, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अगम अगोचर बे अंक अथा।

दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा, दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहुविध तावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा, देन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसा।

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायण मंत्र पतायण, गुरुमुख अमृत पीवा जियो, दुख सुख प्यारे तुद त्याई, ए सुमत गुरु ते

जीता, आत्मगढ़ बिखम तिना ही जीता, तुम दाते तुम पुरख बिदाते, खुद जेवड़ अवरना सूरा जियो। रेन संतन की मेरे मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुद्ध अपागी, सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिनसे कूरा जियो। माज महला पंजवा, विसरना ही एवड दाते, कर कृपा भगतन संग राते, दिन सरैन ज्यों तुद त्याई, एहो दान मोहे करना जियो। माटी अंधी सुरत समाई, सब किस दिया पलिया जाई, अनद बिनोद चोज तमासे, तुद पावे सो होना जियो। जिस दा दिता सब किस लेना, शक्ति अमृत भोजन खाना, सेज सुखाली शीतल पवना, सहज केल रंग करना जियो। सा बुद्ध दीजै जित विसरै नाही, सा मत दीजै जित तुद त्याई, सास सास तेरे गुण गावा, कोट नानक गुरु चरणा जियो। माज महला पंजवा, सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई, सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई, सोई जप जो प्रभ जियो पावे, पाणे पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे, तू संतन का संत तुम्हारे, संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करें प्रतपाला, संत खेले तुम संग गोपाला, अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन के मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने, तिनके संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अघाना जियो। माज महला पंजवा, तू जल निद हम मीन तुम्हारे, तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखारे, तुमरी आस प्यासा तुमरी, तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यों बारिक पी खीर अगावे, ज्यों निर्धन तन देख सुख पावे, त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यों अंधियारे दीपक परगासा, परता चितवत पूरन आसा, मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया, हर हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा, अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बिडारन हरिया, अवर साध चट अगले देखे, मन हर रस सबते मीठा जियो। जो जो पीवे सो तृप्तावे, अमर होवे जो नाम रस पावे, नाम निधान तिसे प्राप्त, जिस शब्द गुरु मन उठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघाना, जिन हर साध पाया सो नाहे डुलाना, तिसे प्राप्त हर हर नामा, जिस मत पागी था जियो। हर इकत हाथ आया वरसाने बहु तेरे, तिस लग मुकत पय कनेरे, नाम निधाना गुरुमुख पाये, कहो नानक विरली डीठा जियो। माज महला पंजवा, निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरे, जन्म पदार्थ गैर गंभीर है, लाख कोट खुशियां रंग रावे, जो गुर लागा पाई जियो। दर्शन पेखत पय पुनीता, सगल उधारे पाई नीता, अगम अगोचर स्वामी अपना, गुर कृपा ते सच त्याई जियो। जहां को खोजे सर्व उपाय, वड पागी दर्शन को विरला पाए, ऊंच अपार अगोचर थाना, ओ महल गुरु देखाई जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त पया जिस हृदय सेरा, गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो। माज महला पंजवा, प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो,
उठत बैठत सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया किलबिख काटे निर्मल छिया आनंद पया निकसी सब पीरा सगल बिना से दर्दा जियो। जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा हत करे जिन गुरु पछाता सो काहे को डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाए गुर पेट तो हो गई बलाए सास सास हर गावे नानक सतगुर टाक लिया मेरा पड़दा जियो। माज महला पंजवा ओत पोत सेवक संग राता प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता पानी पखा पीसो सेवक कै ठाकुर ही का आहार जियो। काट सिलक प्रभ सेवा लाया हुकम साहिब का सेवक मन पाया सोई कमावे जो साहिब पावे सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकुर सब विद जाने ठाकुर के सेवक हर रंग माने जो किछ ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। अपने ठाकुर जो पहराया बहुर न लेखा पुछ बुलाया तिस सेवक के नानक कुर्बानी सो गहर गंभीरा गहर जियो। माज महला पंजवा सब किछ कर में बाहर नाही बाहर टोले सो परम पुलाही गुर प्रसादी जिन अंतर पाया सो अंतर बार सुहेला जियो। चिम चिम वर्षे अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचारा अनद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर के लाजियो। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सू का हरिया सुमत पाए नाम ते आए गुरमुख होए मेला जियो। जल तरंग ज्यो जले समाया त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया कहो नानक प्रम कटे किवाड़ा बहुड़ना होई है जौला जियो। माज महला पंजवा तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पणिया वार वार जाई तिस विटो जो मन तन तुद आरा दे जियो। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिस अपने साजन जिन गुर मिल सो प्रबला दे जियो। सेवड पागी जिन तुम जाने सब के मदे अलिपत निर्बाणे साध के संग उन पौजल तरिया सगल दूत उन सा दे जियो। तिनकी शरण परया मन मेरा मान पान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजे नानक तो तिस प्रभ अगम अगा दे जियो। माज महला पंजवा तू पेड़ साख तेरी फूली तू सूखम होआ अस्थूली तू जल निद तू फेन बुध बुदा तुद बिन अवर न पालिए जियो। तू सूत मणिये भी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद अंत प्रभ कोई अवर न कोई दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्माण रसिया रंग राता अपने कर सब आपे जाने आपे तुद समालिए जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे तू गुपत प्रगट प्रभ आपे नानक दास सदा गुण गावे इक पोरी नदर निहालिए जियो। माज महला पंजवा सफल सोबाणी जित नाम वखाणी गुर प्रसाद किने विरले जानी तन सोवेला जित हर गावत सुनना आए ते परवाना जियो। से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा से कर पले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हों बल तिन संग पछाना जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहे उदारे किलविक काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो। दो कर जोड़ एक बिनो करी जाए
कर कृपा दुबदा पत्थर लीजै नानक कहो प्रभ पय कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जियो माज महला पंजवा अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुरु का दर्शन पाए जियो सुख पया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम वखाना जल थल नीर पर।

मेहरवान किरपाल दयाला सगले त्रिपत अघाए जियो। वन त्रिण त्रिभवन की तोन हरिया करण हार खिल पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै अराधे मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदक तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सबनी थाई तांबो के आकारा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाना तू मेरी ओत तू है मेरा माना तुझ बिन दूजा अवर न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तुद उपाय जित जित पाना तित तित लाए सब किछ कीता तेरा होवे नाही किछ असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन शीतला।

ब्रह्मने अधारा, भगत जीवे गुण गाए अपारा, गुण निधान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे, आस मनोरथ पूरे होवे, पेटत गुर दर्शाया जियो, अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पोलावा, गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए कृपाल स्वामी।

प्रीतम ठाकुर अचपारी तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो तुमरी ओट गोपाला जियो गुण गावत मन हरिया होवे कथा सुनत मल सगली खोवे पेटत संग साध संतन कह सदा जपो दयाला जियो प्रभ अपना साथ साथ समारो ए मत गुर प्रसाद मन पारो तुमरी कृपा ते होए परगाता सर्व मया प्रतपाला जियो सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई।

गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार किया तिन करते है दुख का डेरा काया जियो। मन तन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसे कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो। जो किस करे सो आपे आपे बुद्ध सियाण किछु न जापे अपने संतानों आप सहाय प्रभ परम पुलावा लाया जियो। चरण कमल जन का आधारो आप पैर राम नाम वपारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्व समाया जियो। माज महला पंजवा सो सत मंदर जित सच त्याई है सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा करत सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम वितो कुर्बानो जियो। सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जीवे जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो। सच सलाहन बड़ पाजी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरे तुद पावे सच नाम निशानो जियो। सच्चे अंत ना जाने कोई थान संतर सच्चा सोई नानक सच त्याई।

मेला जप अमृत नाम संत संग मेला करी मूरत सिमरत पल वंजे जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे तै पाओ परम खोया गुरपुरे देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वड ऊंच अपारा नौ निज नाम परे पंडारा आद अंत मद प्रभ सोई दूजा लवे न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचित जाचे सादर वाला देह दान नानक।

आपे तुद बिन अवर न कोई करते मैं कर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन ही सुख पाया सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावो दिन राती सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास सवारिया कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया इकत बिन होर दूजा नाही बाबा नानक ए मत सारी जियो। माज महला पंजवा मन तन रत्ता राम प्यारे सर्व सु दीजे अपना वारे आठ पैर गो

कटिया जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलग अपेवा, काम क्रोध किल दुख गुर काटे, पूरन होई आशा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, परवान गृहस्त उदासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया, बिन से आलस रोगा जियो। जां कै गृह नव निध हर पाई, तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। किन मैं थाप उठापन हारा, आप इकंती आप पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लैन विजोगा जियो। अंचल लाए सब सिस्त्राई, अपना नाव आप जपाई, गुरबो हित पाया कृपाते, नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा पली जाए, सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस लीठा जियो। सब परोई इकत तागे, जिस लाए ले सो चरणी लागे, ऊंद कवल जिस होए।

जिन देखे सब उतरे तलमल, नानक नाम त्याय त्याय जीवे, बिन स्या परम पौ तीथा जियो। माज महला पंजवा, चूठा मंगन जे कोई मांगे, तिसको मरते करी ना लागे, पार ब्रह्म जो सद ही सेवे, सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी, गुण गावे अंदिन नित जागी, बाह पकड़ तिस स्वामी मेले, जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की तूड़ नित बांछे, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाये, जिस सिमरत वर ने चल पाये, नानक को प्रभ होए दयाला, तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदिया, महला पहला कर पहला, इको अंकार सतगुरु प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए, सच्ची दरगे मैल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा, सच्चे मन पति आवणिया। हों वारी जियो वारी सब सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किस केरा, साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा, हों मैं कर कर जाए कनेरी, कर अवगण पछोतावणिया। हुकम पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर के शब्द नाम निशाने, सबना का दर लेखा सके, छूटत नाम सुहावणिया। मन मुख फूला ठौर ना पाए, जम दर बद्दा चोटा खाए, बिन नामे को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच ना पावे, दुबदा बांदा आवे जावे, लिखिया लेख न मिटे कोई, गुरमुख मुक्त करावणिया। पेयड़े पिर जातो नाही, झूठ विछुन्नी रोवे ताही, अवगण मुठी महल न पाए, अवगण गुण बख्सावणिया।

अदर करे तिस गुरु मिलाए, किरबिख का सदा जन निर्मल, दर सच्चे नाम सुहावणिया। लेखा मांगे ता किन दिए, सुख नाही फुन दूए तीए, आपे बख्श ले प्रभ साचा, आपे बख्श मिलावणिया। आप करे तै आप कराए, पूरे गुर के शब्द मिलाए, नानक नाम मिले वड्याई, आपे मेल मिलावणिया। माज महला तीजा, इको आप फिरे परछन्ना, गुरमुख वेखा ता एहो मन पिन्ना, तृष्णा तज सहज सुख पाया, एको मन वसावणिया। हों वारी जियो वारी, इकस क्यों चित लावणिया, गुरमति मन इकट कर आया, सच्चे रंग रंगावणिया। रहाओ एहो जग पूला तें आप पुलाया, इक विसार दूजे लोभाया, अन दिन सदा फिरे परम पूला, दिन नावे दुख पावणिया। जो रंग राते कर्म विदाते, गुर सेवा ते जुग चारे जाते, जिसनो आप दे वड्याई, हर के नाम समावणिया। माया मोह हर के तै नाही, जमपुर बद्दा दुख सहाई, अन्ना बोला किछ नदर ना आवे, मनमुख पाप पचावणिया। इक रंग राते जो तुद आप लिव लाए, पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुख दाता, सब इच्छा आप पुजावणिया। हर जियो तेरी सदा शरणाई, आपे बख्शे देवड़े आई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, जो हर हर नाम ते आवणिया। अन दिन राते जो हर पाए, मेरे प्रभ मेले मेल मिलाए, सदा सदा सच्चे तेरी शरणाई, तू आपे सच बुझावणिया। जिन सच जाता से सच समाणे, हर गुण गावे सच वखाणे, नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लावणिया। माज महला तीजा, शब्द मरे सो मोआ जापे, काल न चापे दुख ना संतापे, ज्योति विच मिल जोत समाणी, सुन मन सच समावणिया। हों वारी जियो वारी, हर के नाए शोभा पावणिया, सतगुर सेव सच चित लाया, गुरमती सहज समावणिया। रहाओ काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए,

जय गुर सबद प्यारे, आप करें सगले कुल तारे, आए से परवान होए मिल प्रीतम सुख पावने। अंतर वस्त मूड़ा बाहर पाले, मन मुख अंधे फिरे बेताले, जिथे वत होवे तिथो कोई न पावे, मन मुख परम कुलावने। आपे देवे सबद बुलाए, महली महल सहज सुख पाए, नानक नाम मिले वड्याई, आपे सुन सुन त्यावणिया। माज महला तीजा, सतगुर साची सिख सुनाई, हर चेतो अंत होए सखाई, हर अगम अगोचर अनाथ अजूनी, सतगुर कह पाए पावणिया। हों वारी जियो वारी आप निवारणिया, आप गवाए ता हर पाए, हर स्यो सह समावणिया। रहाओ पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाईए नाही, सबदे मेल मिलावणिया। गुरमुख अलिपत रहे संसारे, गुर कै तकिए नाम आधारे, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया। मनमुख अंधे शुद्ध न काई, आत्म काती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु पार उठावे, बिन मजूरी पार पहुंचावणिया। एहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए तेही वरते, वासु वास जनावणिया। मन मुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अगम अपारा, दुखिए नित फिरे बिल्ला दे, बिन गुर सांत न पावणिया। जिनकी ते सोई विद जाने, आप करे ता हुकम पछाणे, जेहा अंदर पाए तेहा वरते, आपे बाहर पावणिया। तिस बाजो सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाए लए सो निर्मल होई, नानक नाम वसे कट अंतर, जिस देवे सो पावणिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाए, हौ मैं मेरा सब दुख गवाए, अमृत बाणी सदा सलाहे, अमृत अमृत पावणिया। हौ वारी जियो वारी, अमृत बाणी मन वसावणिया, अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम ते आवणिया। रहाओ अमृत बोले सदा मुख वैणी, अमृत वेखे परखे सदा नैनी, अमृत कथा कहे सदा दिन राती, अवरा आख सुनावणिया। अमृत रंग रता लिव लाए, अमृत गुर प्रसादी पाए, अमृत रसना बोले दिन राती, मन तन अमृत पियावणिया। सो किछ करे जो चित न होई, किसदा हुक्म मेट न सके कोई, हुक्मे वरते अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पियावणिया। अजब कम करते हर केरे, एओ मन पूला जांदा फेरे, अमृत बाणी स्यो चित लाए, अमृत शब्द बजावणिया। खोटे खरे तुद आप उपाए, तुद आपे परखे लोक सवाए, खरे पर खजाने पाए, खोटे परम पुलावणिया। क्यों कर वेखा क्यों सलाही, गुर प्रसादी सबद सलाही, तेरे पाने विच अमृत वरसे, तू पाने अमृत की आवणिया। अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवे हृदय समाणी, नानक अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब कुख ले जावणिया। माज महला तीजा, अमृत वरसे सह सुवाए, गुरमुख विरला कोई जन पाए, अमृत पी सदा तृप्ता से, कर कृपा तृष्णा बुझावणिया। हौ वारी जियो वारी, गुरमुख अमृत पियावणिया, रसना रस चाख सदा रहे रंग राती, सहजे हर गुण गावणिया। रहाओ गुर प्रसादी सहज को पाए, दुबदा मारे इक स्यों लिवलाए, नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी, तुझते बाहर किछ न होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बिचारा, अमृत परे तेरे पंडारा, बिन सतगुर सेवे कोई न पावे, गुर कृपा ते पावणिया। सतगुर सेवे सो जन सो है, अमृत नाम अंतर मन मोहे, अमृत मन तन बाणी रता, अमृत सह सुनावणिया। मन मुख पूला दूजे पाए खुआए, नाम ना लेवे मरे बिख खाए,
अंग दिन सदा विस्ता में वासा बिन सेवा जन्म गवावण्या। अमृत पीवे जिसनो आप पियाए गुर प्रसादी सहज लिव लाए पूरन पूर रहा सब आपे गुरमत नदरी आवण्या। आपे आप निरंजन सोई जिन फिर जी तिन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावण्या। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सच सेवे सह सुभाए सच्चे सब सच्चा सलाही सच्चे मेल मिलावण्या। हों वारी जियो वारी सच सलाण्या सच त्यायन से सच राते सच्चे सच समावण्या। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानण्या।

गुर के सबद सदर है समाए सच सलाहे सब खट अंतर सचो सच सुहावणिया सच सलाही सदा हजूरे गुर के सबद रहा पर पूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावणिया सच मन अंदर रहा समाए सदा सच निश्चल आवे न जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया सच सलाही अवर न कोई जित सेवे सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत सब माहे समाणी निर्मल बाणी हर सलाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया हों वारी जियो वारी सुख दाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर सब सलाही सबदो सुन पिसा मिटावणिया रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया निर्मल अमृत गुर ते पाया विच्चों आप मुआ तिथे मोह न माया निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल बाणी मन वसावणिया जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे होमे मैल गुर शब्दे तोवे निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी दर सच्चे सोबा पावणिया निर्मल ते सब निर्मल होवे निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे निर्मल नाम लगे बड़ पागी निर्मल नाम सुहावणिया सो निर्मल जो शब्दे सो है निर्मल नाम मन तन मोहे सच नाम मल कदे न लागे मुख उजल सच करावणिया मन मैला है दूजे पाए मैला चौका मैले छाए मैला खाए फिर मैल वधाए मन मुख मैल दुख पावणिया मैले निर्मल सब हुक्म सवाए से निर्मल जो हर साचे भाए नानक नाम वसै मन अंतर गुरमुख मैल चुकावणिया माज महला तीजा गोविंद उजल उजल हंसा मन बाणी निर्मल मेरी मनसा मन उजल सदा मुख सो है अत उजल नाम ते आवणिया हों वारी जियो वारी गोविंद गुण गावणिया गोविंद गोविंद कह दिन राती गोविंद गुण शब्द सुहावणिया रहाओ गोविंद गावे सह सुबाए गुर कै पै उजल होमे मन जाए सदा आनंद रहे भगत करें दिन राती सुन गोविंद गुण गावणिया मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए गुर कै शब्द मने मन मिलाए सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए शब्दे नृत करावणिया ऊंचा कूके तने पछाड़े माया मोह जोहया जमकाले माया मोह इस मने नचाए अंतर कपट दुख पावणिया गुरुमुख पगत जा आप कराए तन मन दाता सह सुभाए बाणी वजे शब्द वजाए गुरुमुख पगत थाए पावणिया बहुताल पूरे वाजे वजाए ना को सुने ना मन वसाए माया कारण पिड़ बंद नाचे दूजे पाए दुख पावणिया जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता इंद्री वस सच संजम जुगता गुर कै शब्द सदा हर त्याए एहा भगत हर पावणिया गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत ना पाए कोई नानक नाम गुर भगती पाईए गुर चरणी चित लावणिया माज महला तीजा सच्चा सेवी सच सलाही सच्चे नाए दुख कभी नाही सुख दाता सेवन सुख पायन गुरमत मन वसावणिया हौ वारी जियो वारी सुख सह समाध लगावणिया जो हर सेवे से सदा सोहे सोबा सुर सुहावणिया रहाओ सबको तेरा भगत कहाए से भगत तेरे मन पाए सत बाणी तुदे सलाहन रंग राते भगत करावणिया सबको सच्चे हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चूके फेरा जा तुद पावे ता नाए रचावे तू आपे नाओ जपावणिया
गुरमति हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, इक स्यों लिव लागी सदी हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नौ निद नाम वखरा मन आए, पूरे पाग सतगुर पाया सबदे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेले गुरमुख जाता, तू आपे देवे नाम वडाए, नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सलाहे, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक स्यों मन रहा समाए, मन मने मन है मिलावणिया। गुरमुख होवे सो साला है, साचे ठाकुर वे परवाहे, नानक नाम वसे।

तेरे पगत सो है साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया।

होए तू कर कर वेखे जाने सोए आपे करे कराए करता गुरमत आप मिलावणिया कामन गुणवंती हर पाए पै पाए सिगार बनाए सतगुरु सेव सदा सुहागण सच उपदेश समावणिया शब्द विसारण तिना ठौर न ठाओ तम पूले जो सुन्ने कर पाओ हलक पलक तिनी दोवे गवाए दुखे दुख बिहावणिया लिखदिया कागद मस कोई दूजे पाए सुख पाए न कोई कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे जल जावे कूड़ चितलावणिया गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार से जन सच्चे पावे मोख द्वार सच कागज कलम मसवाणी सच लिख सच समावणिया मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे गुर प्रसादी मिले सोई जन लेखे नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावणिया माज महल है तीजा आत्म राम प्रवास गुरते होवे हों मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे मन निर्मल अंदिन भगती राता भगत करे हर पावणिया हों वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे जो अंदिन हर गुण गावणिया रहाओ आपे करता कारण कराए जित पावे तित पारे लाए पूरे भाग गुर सेवा होवे गुर सेवा ते सुख पावणिया मर मर जीवे ता किछ पाए गुर प्रसादी हर मन वसाए सदा मुक्त हर मन वसाए सहजे सहज समावणिया बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए।

गुर प्रसादी परम पद पाए, सतगुरु आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावणिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए, आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड़ बोल बिखावणिया। इस तन में मन को गुरमुख देखे, पाए पगत जा हों में सोख है, सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए, तिन भी तन में मन ना दिखावणिया। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई, नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावणिया। माज महला तीजा, इस गुफा में अकुट पंडारा, तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा, आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप मुझावणिया। हों वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावणिया, अमृत नाम महा रस मीठा, गुरमती अमृत पियावणिया। रहाओ हों में मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम न पाए कोई, गुर कृपा मन वसावणिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावणिया। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम नाल है बहुत बेगार दुख पाए, मनमुख अंधे सूजे नाही, फिर किर आए गुरमुख वच पावणिया। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हो में मैल जाए, बैस सुतान सद हर गुण गावे, सच्चे सबद समावणिया। नौ दरथा के तावत रहाए, दसवें निज करवासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। बिन शब्द अंतर आनेरा, ना वसल है ना चूके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावणिया। गुप्त प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई, नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। माज महला तीजा, गुरमुख मिले मिलाए आपे, काल न जो है दुख न संतापे, हौमे मार बंधन सब तोड़े, गुरमुख शब्द सुहावणिया। हौ वारी जियो वारी, हर हर नाम सुहावणिया, गुरमुख गावे गुरमुख नाचे, हर से ती चित लावणिया। रहाओ गुरमुख जीवे मरे प्रवाण, आर जा ना छीजे शब्द पछाण, गुरमुख मरे न काल न थाए, गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, आप करे कुल सगले।

गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख होमे चूके पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सह समावणिया, गुरमुख नाम मिले वड्याई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रहे दिन राती, गुरमुख शब्द करावणिया, गुरमुख अन दिन सब दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल सबदे भगत करावणिया, बाज गुरु है अंध अंधारा, जम काल गरठे करें पुकारा, अंधिन रोगी बिष्टा के कीड़े बिष्टा में दुख पावणिया, गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हृदय उठा आप आए, नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया, माज महला तीजा, एका जोत जोत है शरीरा, सबद दिखाए सतगुर पूरा, आपे फर्क की तोन कट अंतर, आपे बनत बनावणिया, हों वारी जियो वारी, हर सच्चे के गुण गावणिया, बाज गुरु को सहज न पाए, गुरमुख सहज समावणिया, रहाओ तू आपे सो है, आपे जग मोहे, तू आपे नदरी जगत परोवे, तू आपे दुख सुख दे रहे करते, गुरमुख हर देखावणिया, आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए, शब्दे उपजे अमृत बाणी, गुरमुख आप सुनावणिया, आपे करता आपे पुगता, बंधन तोड़े सदा है मुक्ता, सदा मुक्त आपे है सच्चा, आपे अलख लखावणिया, आपे माया आपे छाया, आपे मोह सब जगत उपाया, आपे गुण दाता गुण गावे, आपे आप सुनावणिया, आपे करे कराए आपे, आपे थाप उठाते आपे, तुझते बाहर कछु न होवे, तू आपे कारे लावणिया, आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया, गुरमुख सहज समावणिया, आपे ऊंचा ऊंचो होई, जिस आप विखाले सो वेखे कोई, नानक नाम वसै कट अंतर, आपे वेख विखालणिया, माज महला तीजा, मेरा प्रभ पर

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपौ दाता, गुरमत सह समावणिया, रहाओ कर मैं करती तौल पताला, काही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रहे सुख दाता, गुरमत सह समावणिया, काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण न चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सचो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दोही मिलके श्रेष्ठ उपाई, दोवे मार जाए इकत कर आवे, गुरमत सह समावणिया, कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब रहे सुखदाता, अंदर नाम ते आवणिया, अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया।

सद पावणिया। आपे वस राखे आपे दे, गुरमुख वणजे केई के, नानक जिस नजर करे सो पाए, पर कृपा मन वसावणिया। माध महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर के शब्द पाओ दूजा जाए।

सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावण्या रहाओ। आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेवे गुरमुख हर जाता, अमृत नाम सदा।

रे गुर हों में परम चुकाया, अंदर नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावण्या। गुर कै सबद एहो गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे, हर गुण गावे सबद सुहाए, मेरे प्रीतम सुख पावण्या। जम जागाती दूजे पाए कर लाए, नामों पुल्ले दे सजाए, करी मोहत का लेखा लेवे, रतियो मासा।

तो पंडित होई आसरै सगले कुल तारै हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस चख साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौ निद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हो मैं करे ने कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एनस प्रीत शब्द साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई स्नान करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा।

गुरुमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे शोभा पावणिया। मन मुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवन जावणिया। आपे करता दे वडियाई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर सबदी सुख पावणिया। माध महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब।

पर सहजा सोई सुहेला अंग विनोद करे सदकेला सो तनवंता सो वड साहा जो गुरचरणी मन लावण्या पहलो देते रिजक समाहा पिछो देते जंत उपाहा तुझ जेवड़ दाता अवर न स्वामी लवे न कोई लावण्या जिस तू तुथा सो तुद त्याए सात जना का मंत्र कमाए आप करे सगले कुल कारे तिस दरगे खाक न पावण्या।

तो बत्ता कौन सो गिरही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जियो। किन विद बांदा किन विद छूटा किन विद आवन जावन टूटा कौन कर्म कौन ने कर्मा कौन सो कहे कहाए जियो। कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख।

कौन सो चाल जित पार ब्रह्म से आए, किन विद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता, गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता, तन गिर ही उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख चूटा, गुरुमुख आन जान टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा, गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे, गुरुमुख विद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अक्षर जित तावत रहता, गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए, गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस से होयो अनंता, नानक एकस माए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा, हर परवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुख दाता, तू करे सोई सुख पावनिया। हों वारी जियो वारी, गुरुमुख मन तन पा।

तू साहिब शरण सुख दाता सत संगत जप प्रगटावणिया तू ऊंच अथाओ अपार अमोला तू साचा साहिब दास तेरे गोला तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया माज महला पंजवा कर दूजा नित नित दया समालिए मूल न मनो विसारिए रहाओ संता संगत पाइए जित जम के पंथ न जाइए तोसा हर का नाम।

ते प्रभ अवगाहिया ए रस पोगण पातशाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हरे तेरा थिर होआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल ना।

सिमर सिमर गुरुदेव मिट गए तै दूरे, शर्म आवे पार दम की काफिर काहे चूरे, चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे, कट कट एक वर्तदा जल फल महियल पूरे, पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे, सब छड़ाई खसम आप हर जप पई थरूरे, करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे।

जल बिन साफ कुमलावती उपजे नाही दाम, हर ना न मिलिए साजने कट पाए विश्राम। जित पर हर कंस ना प्रगटे पथ नगर से ग्राम, सब सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंक विहूनिया।

गुच्छना प्रवीण अवर न कोए प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती प्रभ विलोप प्राप्त होए वैसाख सुहा।

मानन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संदियास दोए पाए विगुचिए गल पई सज

तब तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा किस लगे जिस मन हर

इच्छ पुनी वद पागिनी वर पाया हर राय। मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए। हालत पलत सब

नानक जीवै जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमाणी थाओ हर ओट दही मन

खेड, पंजवे खान पीन की तात, छेवे कामना पुछे जात, सतवे संज किया परवास, अठवे क्रोध हुआ तन नास, नावे तौले उबे साहा, दसवें गद्दा हुआ स्वाहा, गए गीत पुकारी ताहा, उड्या हंस।

मूल न जाने अकबल टंडोलिम टूंडिम डिख में नानक जग तू का कमल हर पौरी तू करता पुरख अगम है आप सृष्ट उपाति रंग परंग उपार्जना बहु बहु विध पाती तू जाने जिन उपाय सब खेल तुमाती एक आवे एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती गुरुमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख विदाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती जो मन चित तुद त्याए दे मेरे सच्चा बल बल हों तिन जाती श्लोक महला पहला जियो पाए तन साज

जा पजे ता ठीक होवे, कारत करी ना जाए, नानक गुर बिन नाहे पत पत बिन पार न पाए। महला दूजा, देंगे थावों दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानिए, सुरत मत चतुराई ताकि क्या कर आंख वखाणिए, अंतर बहके कर्म कमावे, सोचो कुंडी जानिए, जो कर्म कमावे तिस कर्म नाव होवे, पाप कमाने पापी जानिए। तू आपे खेल करे सब करते, क्या दूजा आंख वखाणिए, जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले, विन ज्योति कोई किछ करो दिखा सियाणिए, नानक गुरमुख नदरी आया, हर इको सुगर सुजानिए। पौड़ी, तुद आपे जगत उपाय कै, तुद आपे तंदे लाया, मोठ गौली पाए कै, तुद आपो जगत खुआया।

मर जम में आया जाया दिन सतगुर मोह न टूटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम ति आई है सुख रजा जा तुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत।

नानक कहे सियाणिए इव कंत मिलावा होए। पौड़ी सदा सदा तू एक है तुझ दूजा खेल विचाया, हौ मैं गर्व उपाय कह लोभ अंतर जनता पाया, ज्यों पावे त्यों रख तू।

हंस संजोग मेल मिलाया, तिन्हीं किया विजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया, सुखों उठे रोग पाप कमाया, हर्षों सोग विजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणित गणाए चगड़ा पाया, सतगुर हथ निबेड़ चगड़ चुकाया, करता करे सो होग न चले।

पौड़ी एक रतन पदार्थ वणज दे एक कच्चे देवा पारा सतगुर तुठे पायन अंदर रतन पंडारा गिन गुर किने ना लद्या अंधे पौके मुए कुड़ियारा मन मुख दूजे पच मुए ना बूझे विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किस अगे करे पुकारा एक दिल तन सदा पौक दे एक ना परे तुजारा गिन नावे होर तन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुकम सवारन हारा। श्लोक महला पहला। मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए ता मुसलमान कहावे अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मुसावे होए मुस्लिम दीन मुहाने मरण जीवन का पर...

पाओ। सुर्ग दिया मोहनिया स्त्रियां होवन नानक सबो जाओ। पी तू है सालाना आसन लह न चाओ। पौड़ी बद शैली गैबाना कसम ना जानई। सो कही है देवाना आप ना पछाणई। कल बुरी संसार वादे खपी है विण नावे बेकार परमे पची है। राह दोवे इक जाने सोई सिजसी। कुफर गो कुफराने पया दजसी। सब दुनिया सुबहान सच समाई है। सिजे दर दीवान आप गवाई है। महला पहला श्लोक। सो जीव्या जिस मन वस्या सोए। नानक अवर न जीवे कोए। जे जीवे पत लखी जाए। सब हराम जेता किछ खाए। राज रंग माल रंग।

क्या मन नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या सेज खाली कीजे भोग विलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे तोल विनाश। पौड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोरा होवे हाथ मरिए चखिए, सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म मने सिरदार दर दीवानी है, फुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बिचार शब्द सुनाया, एक होए असवार एक ना साखती,

पास, पत्थर पाला क्या करे, खुसरे क्या घरवास, कुत्ते चंदन लाई है, पीसो कुत्ती ताट, बोला जे समझा।

वेदा गंद बोले सच कोए, मोया गंद ने की सत होए, एस गंद वरते संसार, मूरख गंद पवे मोहे मार, नानक आखे एवो विचार, सृष्टि गंद पवे दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे

पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमति आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशानिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ियार परम पुलाणिया विष्टा अंदर वास साध ना जानिया गिन नामे दुख पाए आवन जानिया नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। श्लोक महला पहला। सीहा बाजा चरगा कुहिया एना खवाले कहा काओ थान तिना मास खवाले एह चाए रहा नदियां विच टिब्बे दे खाले थली करे असगाहा कीड़ा खात दे पात साई लश्कर करे स्वाहा जेते जी जीवे ले साहा जीवाले तांके असाहा नानक ज्यों

की कार कर्म कमाई है, गुरमती आप गवाए नाम से आई है, दूजी कार है लग जन्म गवाई है, बिन नामे सब विष जय खाई है, सच्चा सबल सलाह सच समाई है, बिन सतगुरु सेवे नाही सुख निवास फिर आई है, दुनिया खोटी रास कूर कमाई है, नानक सच फरा सलाहे पत सो जाई है। श्लोक महला पहला, तुद पावे ता वावे गावे, तुद पावे जल नावे, जा तुद पावे ता करे बिपूता सिंगी नाद बजावे, जा तुद पावे ता पने कतेबा मुल्ला शेख कहावे, जा तुद पावे ता होवे राजे रसकस बहुत कमावे, जा तुद पावे तेग बगावे सिर मुंडी कट जावे, जा तुद पावे जाहे शंकर सुन गल्ला कर आवे, जा तुद पावे नाए रचावे तुद पाने तू पावे, नानक एक कह बेनंती होर सगले कूड़ कमावे। महला पहला, जा तू वड्डा सब वड्याईया चंगा चंगा होई, जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई न कोई, आसन वेखन बोलन चलन जीवन मरना तात, हुक्म साज हुक्मे विच रखे नानक सच्चा आप पौड़ी, सतगुर सेव निसंग परम चुकाई है, सतगुर आखे कार सो कार कमाई है, सतगुर होए दयाल ता नाम ते आई है, लाह भगत सो सार गुरमुख पाई है, मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है, सच्चे दे दर जाए सच चमाई है, सच्चे अंदर महल सच बुलाई है, नानक सच सदा सच्यार सच समाई है। श्लोक महला पहला, कल का तीरा जे का साई कर्म पंकर उड़रिया, कूर अमाव सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया, हौ पाल विकुन्नी होई अधेरे राहु न कोई, विच हौ में कर दुख रोई, कहु नानक किन विदगत होई।

करम पूरे पूरा गुरु पूरा जा का बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इने चित कठोर सेव गवाई है जित काट सच ना पाए सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वत तोल तुलाई है कोई ना आखे तत हो।

बहुर ना पाई ताओ सती पैरी सत पला बही है पड़िया पास उथे पाप पुन बिचारी है कूड़े कते रास उथे खोटे सती है खरे की चैसा बास बोलन।

दोहा सुरिया आपे खसम देखे कर वो पाए नानक ए वै जानिए सब किस किसे रजाए महला दूजा नानक परखे आपको ता पारख जान रोग दारू दोवे बुझे ता बैक्ष जान वासना करी मामला जाने मेहमान मूल जान गला करे हान लाए हान लब न चले सत रह सो विष्ट परवान सर संदे आगास को क्यों पहुंचे बाण अग्गे ओ अगम है वाहे दड़ जान पौड़ी नारी पुरख प्यार प्रेम सिगारिया कर्ण भगत दिन रात न रहनी वारिया मेला मंज

जी गया सब सवारी आस अमृत पी गया। श्लोक महला पहला। मारू मी न तृप्तिया अग्नि लह न पुख, राजा राज न तृप्तिया सायर परे सुख, नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा। नेफलंग तस जन्म सजावत ब्रह्म न बिंदते, सागरंग संसारस गुर प्रसादी तरह के, करण कारण समरथ है कहो नानक विचार, कारण करते वश है जिन कल रखी तार, पौड़ी खसने कै दरबार टाडी वसया, सच्चा खसम कलान कमल विकसया, खसमो पूरा पाए मनो रहस्या, दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसया, सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दसया, सच्चा शब्द विचार काल विदुषया, ताडी कथे अकथ शब्द सवारिया, नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया। श्लोक महला पहला। खत्यो जम्मे खत्ते करनित खत्या विच पाहे, तोते मूल ना उतरे जेसो तोन पाहे, नानक बख्शे बख्शे नाहे तपाई पाए। महला पहला। नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगिए सुख, सुख दुख दोए कर कपड़े पैरे जाए मनुख, जिथे बोलन हाई है तिथे चंगी चुप पौड़ी, चारे कुंडा देख अंदर पालिया, सच्चे पुरब अलख सिरज निहालिया, उजड़ पुले रहा गुर वे खा लिया, सतगुर सच्चे वाहो सच समालिया, पाया रतन कराहो दीवा बालिया, सच्चे सबल सलाहे सुखिये सच वालिया, निदरिया डर लग गर्व से गालिया, नावो पुला जग फिर बेतालिया। श्लोक महला तीजा। पैर च जमे पै मरे पी पो मन में होए, नानक पैर च जे मरे सहला आया सोए। महला तीजा। पैविन जीव है बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए, नानक पैविन जे मरे मोह काले उठ जाए। पौड़ी सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल ना कबू चूरी है, सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानिए, सतगुरु होए दयाल ता जमका डर के हा, सतगुरु होए दयाल ता सद ही सुख देहा, सतगुरु होए दयाल ता नव निद पाई है, सतगुरु होए दयाल ता सच समाई है। श्लोक महला पहला। सिर खोहाए पिए मलवानी जूठा मंग मंग खाई, फोल फदीहत मो लैन परासा पानी देख सगाही, पेड़ा वांगी सिर खोहायन परियन हाथ सुहाई, माऊ पियू किरत गवाए टब्बर रोवन ताही, ओना पिंड ना पत्ता।

नानक ता पत जानिए जा पत रखे सोए पौड़ी। तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया, तू सच्चा दीवान होर आवन जानिया। सच जे मंगे दान सेत दे देहा, सच तेरा फुरमान सब दे सोया। मनिए ज्ञान त्यान तुदे ते पाया, कर्म पवे निशान ना चले चलाया। तू सच्चा दातार नित देने चले सवाया, नानक मंगे दान जो तुद पाया। श्लोक मैला दूजा, दीखिया आख बुझाया सिफती सच समेओ।

ताजी सच्चे महल खसम बुलाया, सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरुमती खादा रज तिन सुख पाया, ताजी करे पसा।

डर डर जाए, सो डर के हा जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरतै सब तेरी रजाए। डरिए जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आखा समान, इस विच भूख बहुत ने।

खेल चंचल चपल बुद्ध का खेल, नौ दरवाजे दसवां द्वार, गुजरे ज्ञानी यो विचार, कत्ता बक्ता सुनता सोई, आप बिचारे सो ज्ञानी होई राव, देही माटी बोले कौन, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, मुई सुरत बाद अंकार, ओ नाम हुआ जो देखन हार, जय कारण पट तीरथ जाही, रतन पदार्थ पट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीतर हो दी वत्स न जाने, हाउ नाम हुआ मेरी मुई बलाए, ओ नाम हुआ जो रहा समाए, कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया, गौड़ी मेला पहला दखनी, सुन सुन गूजे माने नाओ, ताके सब बलिहारे जाओ, आप पुलाए ठौर न ठाओ, तू समझावे मेल मिलाओ, नाम मिले चले

शरीफ हुक्म संजोगी गर दस द्वार पंच वसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां ते आवे कह उपजे कह जाए समावे।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरुमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह दिस सारे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल फाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरव संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन तन दे ले सहज सुभाए, नानक तिन कह लाग।

पर पंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सो होए। बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार। गौड़ी महला पहला, उल्टो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन बस द्वार, त्रिभुवन बेदिया आप मुरार। रे मन मेरे पौम न की जय, मन माने अमृत रस पी जय रहाओ। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर कई कर कर ते जानिया। जप सत तीरथ मज्जन नाम, अजक विथार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो कर कर जाओ। किस जाचो नहीं को थाओ, नानक गुरुमत।

मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुरु मिले त दुबदा पागे, कमल विगास मन हर प्रभ

गए होए, ज्योतिष पाना सोई हुआ, अगर न करने वाला दुआ, न जाना कर्म केवट तेरी दात, कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ, तू एवड दाता देवन हार, सोत नाही।

जो पावी त्यो नाम जपाए तू दाना बीना साचा सिर मेरे गुरमत दे परोसे तेरे तन में मैल नाही मन राता गुरबचनी सब शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत शरणाई गौड़ी महला पहला जिन अतख कहाया अप्यो पी आया हम कह विसरे नाम समाया क्या डरिए डर डर है समाना पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर वास सहज सुभाए मिले सावास जाए सवारे सांझ बिहाल इत उत मन मुख बांधे काल एनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले परम दूरे गौड़ी महला पहला।

ते हर जान राम भगत गुर सेवा करना बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई सिमरत शास्त्र पंडित बुक सोई बिन गुर अर्थ विचार।

हाँ तुद आखा मेरी काया तू सुन सिखा मारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी लाए तबारी वेल पराई जो है जियड़े करे चोरी बुरियारी।

पूजा मेवा में सब किछ चाखिया, एक अमृत नाम तुम्हारा। दे दे नीव दीवाल उसारी, पख मंदर की तेरी, संचे संत ना दे किसी, अंध जाने सब मेरी। सोइन लंका सोइन माड़ी, संपे किसे न केरी, सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसे का पाना। रहाओ साओ हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जा रे। जियो पिंड सब रास तिसे की, मार आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला, अगर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना। मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार।

अवर ने तेन सो पंच जना। ताहे मड़ोली लूटिया देहोरा सातन पकड़ी एक जना। जम डंडा गल संगल पड़िया पाग गए से पंच जना।

लज टूकस मूसा पाई रे। मन मुख करे ते का दुख लागे, गुरमुख मिले बढ़ाई रे। जो तिनकी आसोई हुआ, कीर्तना मेटिया जाई रे। सुबर भरे ना होवे ऊने, जो राते रंग लाई रे। तिनकी पंख होवे जे नानक, तो मूड़ा किस पाई रे। गौड़ी चेती मैला पहला, कब की माई बात सब चेरा, किदू था वो हम आए।

से पंख उड़ाए। हटपटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछों देखे तुझसे कहां छुपावे। तट तीरथ हम नव खंड देखे हटपटन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लागा।

तरे अंश न चाहे आ जाए, अंश को चाहन जो गए से आए अंश गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पाग होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जाती खत्म का किसे बधाई दे। गौड़ी बैरागुण मेला पहला हरणी होवा बन बसा, संग मूल चुन खाओ। गुर प्रसादी मेरा सौ मिले, वार वार हो जाओ जियो। मैं बन जारन राम की, तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ। कोकिल होवा अंब बसा, सहज सबक विचार। सहज सुबह मेरा सौ मिले, दर्शन रूप अपार। मछली होवा जल बसा, जी जंत सब सार। उर्वार पार मेरा सौ वसे, हो मिलोंगी बां पसार। नागन होवा तर वसा, शब्द वसे कौ जाए। नानक सदा सुहागणी, जिन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्वी

इतना पारा वार मेरा प्रभु बख्शे बख्शनवार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए मन निर्मल वसे सब सोए साच वसे साची सब कार उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए गुरमुख नाम पछाने कोए जीवे दाता देवन हार नानक हरना में लगे प्यार।

पूरे पाग मिले गुर आए साचे सहज साथ कमाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अगन बुझाए गुर ते सांत वसे मन आए गुर ते पवित्र पावन सुच होए गुर ते शब्द मिलावा होए। बाद गुरु सब परम पुलाई बिन नामे बहुता दुख पाई गुरमुख हो वैसो नाम से आए दर्शन सच्चै सच्ची पत होए। किसनो कही है दाता इक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा सो थाओ सच मन निर्मल होए सच निवास करे सच सोए सच्ची बाणी जुग चारे जापे सब किछ साचा आपे आपे। कर्म होवे सब संग मिलाए हर गुण गावे बैस सुखाए रहाओ। जलो एह जेवा दूजे पाए हर रस न चाखे फीका आलाए बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुदाए गुर कृपा ते सत समाए साचे राती गुर शब्द विचार अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए उंदे पांडे टिके ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द

गावत रहे जिस सतगुरु पावे, मन सन राता नाम सुहावे, रहाओ एक गावे एक भगत करे, नाम न पावे बिन असने, सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना तिर राख्या सदा उद्धार। भगत करे मूर्ख आप जनावे, नच नच तपे बहुत दुख पावे, नचिए तपिए भगत न होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए, भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए, मेरा प्रभु साचा सब विद जाने, नानक बसे नाम पछाने, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए, बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसनो बख्शे देव डिहाई, गुर प्रसाद हर वसे मन आई, रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे, मन में मत मैगल मित धारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा, मन असाध साधे जन कोए, अचर चरे ता निर्मल होए, गुरमुख इव मन लया सवार, हों मैं विच्चों तजे विकार, जो तुर राखियन मेल मिलाए, कदे ना बिछुड़े शब्द समाए, अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुख नाम पछाने, गौड़ी ग्वारे री महला की जा, हों मैं विच सब जग बौराना, दूजे पाए परम फुलाना, बहुत चिंता चितवे आप न पछाना, संदा करत्या अन दिन विहाना, हृदय राम रमो मेरे पाई, गुरमुख रसना हर रसन रसाई, रहाओ गुरमुख हृदय जिन राम पचाता, जग जीवन सेव जुग चारे जाता, हों मैं मार गुर शब्द पछाता।

जित सेवे दरगे पत परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ रहाओ, तिन तू विसरे जे तुझ आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मनमुख अज्ञानी जो नी पाए, मनमुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

तहां गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई, आपे सुतिया देह जगाई, किसकी कीमत किने न होई, कह कह कथन कहे सब कोई, गुर शब्द समावे बूझे हर सोई, सुन सुन वेखे शब्द मिलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, नानक नाम रते हर नाम

असंत अनाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे ते माया नाल लूजे, अंध अज्ञानी कदे न सीजे। इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आस करे सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म कर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना

मुझ को पैदल उतरो पार रहाओ। परमे आवे परमे जाए के जग जन्मिया दूजे पाए। मन मुख न चेते आवे जाए आप फुला के प्रभ आप फुलाया। इहो जियो विडानी चाकरी लाया मां दुख खटे बिरसा जन्म गवाया। कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विचों परम चुकाए। नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए। गुरु सेवा ते मन पति आए से तनवंत हर नाम कमाए। पूरे गुर ते सो जी पाए हर हर नाम जपो मेरे पाई। गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई। गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ। आप पछाणे मन निर्मल होए जीवन मुक्त हर पावे सोए। हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सहज समावे सोए। दूजे पाए न सेवे आ जाए हों मैं माया महा बिख खाए। पुत कुटुंब गृह मोहया माए मन मुख अंधा आवे जाए। हर हर नाम देवे जन सोए अंजन भगत गुर सबदी होए। गुरमत विरला बूझे कोए नानक नाम समावे सोए। नानक नाम समावे सोए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा। गुर सेवा जुग चारे होए पूरा जनकार कमावे कोई। अखुट नाम तन हर कोट न होई ऐसे सवा सुख दर शोभा होई। ए मन मेरे परम न कीजै गुरुमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ। सतगुर सेवे से महापुरुष संसारे आप उदरे कुल सगल निस्तारे। हर का नाम रखे उदारे नाम रते पौजल उतरे पारे। सतगुर सेवे सदा मन दासा होमे मार कमल परगासा। अनहद वाजे निज कर वासा नाम रते कर माहे उदासा। सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी जुग जुग पवती आस वखाणी। हम दिन जपे हर

हृदय नाम नित हर रस कोग, गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ। ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा से किने विरले चख डीठा। कर्म कांड बहु करे अचार, बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार। बंधन बांधियो माया पास, जन नानक छूटे गुर प्रगास। महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है। क्या धरती मदे पानी नाही, जैसे धरती मदे पानी प्रगासिया। बिन पगा बरसत।

रूप सदा है तेरे, तुझ ही माहि समाही। इतने जन्म फूल परे थे, जा पाया ता फूले नाही। जाता कारज सोई पर जाने, जे गुर के शब्द समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई। नानक तत् तत् क्यों मिलिया, पुनरप जन्म न आही। गौरी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है, बांदा दूजे पाए। हो मैं कर्म कमाऊं दे, मन मुख मिले सजाए। मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निधान ले, दरगे ले छबाए।

पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए अन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए होमे तजे विकार जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार गौरी बैरागन महला तीजा कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेव करे गुण सुन ले सौरे वास पाया गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया ससुरे पेये फिर वसे कहो कित विद पाये आप निरंजन अलख है आपे मेल आये रहाओ आपे ही प्रभ देह मत हर नाम ते आये वड़पागी सतगुर मिले मुख अमृत पाये हो मैं दुबदा बिन सजाए सहजे सुख समाये सब आपे आप वर्तदा आपे नाय लाये मन मुख गर्भ न पायो अज्ञान ए आने सतगुर सेवा ना करें फिर पछताने गर्भ जो नी वास पाए दे गर्भे गल जाने मेरे करते ए वह पामदा मन मुख परमाने मेरे हर प्रभ लेख लिखाया दुर्मस्तक पूरा हर हर नाम से आया पेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधक बीरा हर हर बस मिलाए प्रभु जन नानक कीरा गौरी बैरागन महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर सत बिचारा मत मलीन प्रगट पई जत नाम मुरारा शिव सकत मिटाया चूका अंधियारा तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित विद पाई है संत जनो जिस देख हो जीवा हर दिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा रहाओ हर हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गक्कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर

रे हर शरणागत राखले हो मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरुमति हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया पर सोहेला गाया हर दया पार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा चौथा चौक दे सतगुरु प्रसाद पंडित खास सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर पद मन मेरे।

मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई, गौरी ग्वारे री महला चौथा। निर्गुण कथा कथा है हर की, पज मिल साधु संगत जन की, तर पौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन त्यावे हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे, सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे, संत जना स्यों प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई, ते जन नानक नाम समाई, ते जन नानक नाम समाई, गौरी ग्वारे री महला चौथा। माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए, ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे। रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे, हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल पारा, नरपत प्रीत माया देख पसारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा, नर प्राणी प्रीत माया तन खाते, गुर सिख प्रीत गुर मिले गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, गौरी ग्वारे री महला चौथा। पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए, भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोच पूर हमारी। रहाओ चटवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिबसे देखे माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए, और सब प्रीत माया मोह काचा, बिनस जाए पूरा कछ पाचा, जन नानक।

रंग स्यों जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वंज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर तगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया और वंज करे वपारिये अनंत तरंगी दुख माया कोई जे है वंज हर लाया फल से हाथिन पाया हर हर वंज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक साओ।

तन खाट दे कर भोग बिलासा त्यो हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझे वडैया रहाओ मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लगे जा हर गुण गावे हर जन परवार सुधार है इक्की कुली सब जगत छड़ावे जो किछ किया सो हर किया हर की वड्याई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत पंडार लहाएगा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम काशी को हर नाम कढ़ाई जन नानक हर का

मेरा पुत ती खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर।

वो बतावे क्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे। बिच संचय हटवाणिया बहाट कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए। क्यों हर जन हर

सो जंतर है जो दासन दास जन नानक नाम से आया गुरुमुख परगास। गौड़ी बैरागन महला चौथा। नित दिन सरात लालच करे पर मैं परमाया वेगार सिरे वेगारिया सिर पार उठाया। जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै कम हर लाया। मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए। नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाओ। नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ सब माया। कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया। तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया। नित सौदा सूद की चै बहु पात कर माया कै ताई। जा लाहा दे ता सुख मने तोटे मर जाए। जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाए। जितनी भूख अन रस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्तिया फिर भूख न लागे। गौड़ी बैरागन महला चौथा। हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा। जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। हों कुर्बानी गुर अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा। मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार। मत निर्गुण हम मैले कबहू अपनी कृपा तार रहाओ। हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं बहु बार बार हर गणत नावे। तू गुणवंता हर हर दयाल।

सतगुरा जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अगर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदब मेरा सत।

फिर ते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संता।

अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुरु गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार। मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के हैं इयाने तन तन गुरु गुर सतगुर पादा जिन हर उपदेश दे

त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली, जैसे काकी तीस बतीस है, विच राखे रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काकी कै किछ हाथ है, सब वसगत है।

मरा ताप सिरत साप सब हर के बस है। कोई लाग न सके बिन हर का लाया, ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति अवसर ले चढ़ाया। गौड़ी बैरागण महला चौथा, जिस मिले मन होए आनंद, सो सतगुरु कहिए मन की दुविधा बिरस जाए, हर परम

आओ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुरु पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुरु तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुरु मिलिए तोटा मूल न आवे हर लाभ नित दृढ़िए जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरे।

चोली, अपने हर पद की हों बोली। जब हम हर सेती मन मानिया, कर दीनो जगत सब गोल अमोली। रहाओ करो विवेक संत जन पाई, खोज हृदय देख टंडोली। हर हर रूप सब जोत सवाई, हर निकट वसे हर कोली। हर हर निकट वसे सब जग के, अपरंपर पुरख अतोली। हर हर प्रगट कियो गुर पूरे, सिर वेचियो गुर कह मोली। हर जी अंतर बार तुम शरणागत, तुम वड पुरख वडोली। जन नानक अंदिन हर गुण गावे, मिल सतगुर गुर वे चोली। गौरी पूर्वी महला चौथा, जग जीवन अपरंपर स्वामी, जगदीशर पुरख विदाते। जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी, तित मार्ग हम जाते। राम मेरा मन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया। हर रामे नाम समाते, रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद। हर हर नाम हर साते, तिनके पाप दोख सब बिन से, जो गुरमत राम रस खाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक, ते गुर संतोख सरनाते। दुर्मत मैल गई सब तिनकी, जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप, आप प्रभु ठाकुर, तुम जेवड अवर न दाते। जन नानक नाम ले ता जीवे, हर जपिए हर

सो सतगुर मेल मेरा प्राणे, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूर मुग्ध अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जा...

हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने, जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूड दीवाने, तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोय पचाने, जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने, जन नानक हर हर हर जप प्रगते, मत गुरमत नाम समाने, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है, स्वामी कौ किथे हर पहु नसी है, हर आपे बस ले प्रभ साचा, हर आप छदाए छुटी है, मेरे मन जप हर हर हर मन जपी है, सतगुर की शरणाई पज पो, मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटी है, रहाओ मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुखदाता, जित सेवे निज कर वसी है, गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसी है, मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम, लैलाहा हर मन हसी है, हर हर आप दया कर देवे, ता अमृत हर रस चखी है, मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे, ते साकत नर जम कुटी है, ते साकत चोर जिना नाम विसारिया, मन तिनके निकट न फिटी है, मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर, जित सेवे है लेखा छुटी है, जन नानक हर प्रभ पूरे किए, खिन मासा तोल न कटी है, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे, मेरा जियो पिंड सब तेरी, दया करो हर दर्स दिखावो, मेरे मन सन लोच कनेरी, राम मेरे मन सन लोच मिलन हर केरी, गुर किरपाल कृपा किंचत गुर कीनी, हर मिलिया आए प्रभ मेरी, रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी, साबिद तुम हर जानो मेरी, अंदिन नाम जपी सुख पाई, नित जीवा आस हर तेरी, गुर सतगुर दाते पंथ बताया, हर मिलिया आए प्रभ मेरी, अंदिन अनद पयावड पागी, सब आस पुजी जन केरी, जगन्नाथ जगदीशर करते, सब वसगत है हर केरी, जन नानक शरणागत।

जो पानी कागद बिनस जात है त्यों मनमुख गर्भ गला डे। हम जाने कछु न जाने आगे जो हर राख है त्यों ठाडे। हम फूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिर साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है। राव सात हर रस साध।

अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ग्रह मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम

तन तन गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुरु।

चाया हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टि चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद गुरमत मनुआ गावे बदपागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हृदय गुरमत राम रसायन जुहवा हर गुण गावे मन रसक रसक हर रस आघाने फिर बौर न पूख लगावे। कोई करे उपाव अनेक बहु तेरे बिन कृपा नाम न पावे जन नानक कौ हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदु जत नाम करम्मा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोष पिता कर गुर पुरख अजन्मा बद पागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतना सदा निर्वाणी जियो बद पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो मेरा मन तन हर रंग पिन्ना। आवो संतो मिल नाम जपाहा विच संगत नाम सदा लैलाहा जियो कर सेवा संता।

मन करी हाजियो, मिल संत जना रंग माने रलिया जियो, गुरु दीपक ज्ञान सदा मन गलिया जियो, हर तुठे टुल टुल मिलिया जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा हर टोले जियो, मैं मेले मित्र सतगुरु वे चोले जियो, मन देवा संता मेरा।